चाल बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा।

0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या

चलिए सुबह आज एक सवाल से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिंपली आफरीन, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड सुबह मुझे बताइए, आपकी जो शुरुआत होती है मॉर्निंग की, ऑफिशियली कब से स्टार्ट होती है? अलार्म बजने पर, चाय कॉफी के बाद हो जाता है, या जब आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई अब उठना ही पड़ेगा, यही काम है, या फिर जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो फाइनली ऑफिस के जाने के लिए कि हाँ अब हमारी मॉर्निंग हुई है? बिकॉज ऑनेस्टली हर किसी की मॉर्निंग का अपना एक अलग सिस्टम होता है। किसी के घर में ऑलरेडी फुल ऑन ट्रैफिक केओस चल रहा होता है, किसी का स्कूल रन शुरू हो गया होता है, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, और कोई अभी भी मेरे ख्याल से बेड पे बस 5 मिनट्स और निगोशिएट कर रहा होगा। व्हाटएवर स्टेज ऑफ द मॉर्निंग You are at, मैं आ गई हूँ यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए और एक गारंटी देने के लिए कि भाई देखो, शुरुआत अगर हमारे साथ की है ना 89.6 FM पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन के साथ, तो जबरदस्त गाने और जबरदस्त मूड इज एब्सोल्युटली गारंटीड। सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स रादर किक स्टार्ट दिस डे विद दिस फैंटास्टिक ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virpa la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: कर लेना।
1: ठीक है चलो चलो तू भी ले ले मामना नंबर मेरा। कैसे बोलते हैं यार ये फटाफट गाने में। मीनवाइल मेरा भी नंबर ले लो और गुड मॉर्निंग बोल दो। 5000 1896 इज माय व्हाट्सएप नंबर। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आप फ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग जहां पर गुड मॉर्निंग की बात की है मैंने और गुड मॉर्निंग मैसेजेस आर योर फ्लडिंग ईयर। जैसे इमरान का बड़ा ही क्रिएटिव मैसेजेस आते हैं हर सुबह गुड मॉर्निंग द मॉर्निंग एयर अ सिप ऑफ टी एंड योर वंडरफुल शो। थैंक यू यार। उसके अलावा नाजीन जी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। देन आई हैव आलीशान मैसेजिंग मी वेरी गुड मॉर्निंग आप फ्रीन गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल आलीशान। सो यस 5000 1896 is my good morning number, यानी WhatsApp number। यहाँ पर अगर आप messages कर सकते हो। Meanwhile चलो जब आई हूँ तो फटाफट से जरा weather का हालचाल सुना कर जाऊँ।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: Weather update।
1: Well, वेदर जो है आज ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस। ओ माई गॉड, आई मीन ये तकरीबन 3 महीने बाद ये 30s का आंकड़ा मुझे नजर आया यहाँ पर। अदरवाइज इट्स ऑलवेज अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस एंड इवन मोर। सो वेल वेरी गुड साइन इंडीड। 30 डिग्री सेल्सियस मिनिमम पर रहेगा और मैक्सिमम 39 डिग्रीज चल रहा है। ह्यूमिडिटी है, यही तो है जो परेशान कर रही है यार हमें। काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है और दैट्स लाइक अराउंड 79% टूडे। दैट्स रियली हाई। So having said that, बस it's a good sign कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हमारे जो दिन हैं वो ठंडी की तरफ जाएंगे। और जैसे ही मैंने ये मैसेज किया है यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग बिलाल का मैसेज आया है। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। तो बस फटाफट से थे आओ, गाने सुनो, मज़ेदार बातें करेंगे, गपशप करेंगे और अकाशा सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में ये अगला गाना भी सुनेंगे। मैं एक सदिल तक आफरीन तो अभी अभी आई है। 4 घंटे की महफिल में यहाँ पर जमने वाली है। अनमिर्चित शॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
5: The Mentalist Suhani Shah live

0: Well, out the parents out there, अगर आपके बच्चे 8th, 9th या 10th ग्रेड में हैं, then this is definitely for you. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को and
1: क्या खबर कतर?
0: देखिए खबर में तो ऐसी है that कतर में National School Vaccination Campaign में अब HPV वैक्सीन को include किया गया है. कैंपेन गवर्नमेंट और प्राइवेट schools मिलाकर 301 schools कवर करेगा with more than 75,000 students in grade 8, 9 and 10th. अब HPV वैक्सीन क्यों important है ये मैं बताऊं. That HPV यानी Human Papilloma Virus, ये कुछ high risk types future में certain cancers cause कर सकते हैं and this vaccine is essentially about early prevention. First phase जो है 28 September से लेकर 18 November 2026 तक चलने वाला है. इसमें grade 9 students को HPV vaccine की first dose दी जाएगी. Second phase 25th April से लेकर 16th May 2027 तक होने वाला है, which will also include grade 8 students and the second dose for grade 9. And parents, most important information, vaccination compulsory नहीं है. It is completely optional and requires prior signed consent from the parents or a guardian. So, अगर आपके घर में 8th, 9th या 10th के students हैं, school से आने वाले consent form और awareness leaflet को वो usual school circular है, बाद में देख लेंगे, ऐसे file मत कर देना. Read it properly, understand the information and then make an informed decision. मैं हूँ आफरीन आपके साथ, mic से दिल तक, right here on Mirchi. It's hot.

0: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
1: मेरी ऑफिस में बहुत बकवास चाय मिलती है, क्या करूं?
0: अगर ऐसा है तो टपरी पे काम करना स्टार्ट कर, उधर तेरे को चाय मस्त मिलेगी।
2: खोपड़ी तोड़ साले का।

0: वेल, पलक मुचल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची और गानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मिर्ची घड़ी का इशारा देख लेते हैं। सुबह के 7:01 की तरफ है और अगला गाना जो है इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक 90s का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज से और गाना है फ्रॉम द मूवी बॉर्डर एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। राइट हियर आप इनके साथ बने रहिएगा मिर्ची स्पॉट।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: वेल बॉर्डर से ये गाना राइट हियर ऑन मिर्च, ये आपने सुना? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कतर में रहते हुए अगर आपको बहुत टाइम से हैव यू बीन लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज हियर, कि हाँ ये सब पिछले कुछ सालों में कतर का प्रॉपर्टी मार्केट यानी बाइंग सेलिंग वाला जो मार्केट है वो बढ़ गया है एंड पीपल हैव स्टार्टेड बाइंग प्रॉपर्टी हियर। और अगर आप सोच ही रहे हो कि खरीदना है देयर सम प्लान, सो लेट मी गिव यू सम न्यूज ऑन द प्रॉपर्टी दैट इज द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ कतर।
1: क्या खबर कतर?
0: वेल देखिए, कतर के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अकारत का लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 6 टू 12 सितंबर के बीच प्रॉपर्टी सेल कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 354.5 मिलियन कतरी रियाल रही है। ये प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में अराउंड 53% लोअर है, बट इंटरेस्टिंगली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्चुअली स्लाइटली इंक्रीज्ड। 118 सेल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हैं, अबाउट 1.7% मोर देन प्रीवियस वीक। सो डील्स कम नहीं हुई है बट ओवरऑल वैल्यू से काफी सिग्निफिकेंटली वैल्यू जो है ऑफ दीज डील सिग्निफिकेंटली लोअर रही है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी टाइप देखें तो विला सबसे आगे है अकाउंटिंग फॉर अराउंड 150 कतरी रियाल मिलियन कतरी रियाल, फॉलोड बाय वेकेंट लैंड। यस, वेकेंट लैंड भी लोग खरीद रहे हैं यहां पर 128 कतरी मिलियन रियाल। एंड लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो दोहा म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेल्स वैल्यू फॉलोड बाय अल्दाइन एंड अल रयान। सो सिंपल टेक अवे यहां पर ये है दैट एक वीक का डिप मार्केट ट्रेंड डिसाइड नहीं करता, बट अगर आप कतर प्रॉपर्टी मार्केट फॉलो करते हैं और ये काफ़ी टाइम से आपकी नज़रें हैं इस पर, देन आई थिंक सो ये वीक आप जाकर थोड़ा सा और भी ज़्यादा देख ले। मेरे ख्याल से प्राइजेस भी थोड़े से डिप हुए हैं यहां पर। सो विद दिस मैं हूं आफरीन, ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट कतर अपडेट्स टू यू एंड Also the latest track, जैसे अरूब खान की आवाज में अगला गाना is gonna remind you of just one person and that is Ravi Kishan for some reason।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग,
2: ओके? मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah, live

0: नो नो नो नो नो नो, मैं नहीं मानती कि हम यार हैं। यार ऑफ कोर्स हम यार हैं, हम रोज यहाँ मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और जबरदस्त से यहाँ पर गाने भी सुनते हैं। सो वेल, है कौन? मैं हूँ फिलहाल वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एंड दोस्तों, मुझे आपसे मेरी आज एक सुपर पावर के बारे में बात करनी है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। सही में मेरे पास ना एक ऐसी सुपर पावर है जो ऐसी है कि मैं ना कहीं पर भी, सोफे पे, बेड पे, फ्लाइट में, कार में, कहीं पर भी अगर आप कहोगे मुझे 10 से 20 सेकेंड में आई कैन स्लीप, यस, मतलब एकदम मैं डोज ऑफ हो जाती हूँ। आई कैन नैप, आई कैन जस्ट स्लीप। एंड अपेरेंटली दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरे जैसे जिनके इसमें सिस्टम में ही कह सकते हैं ये स्लीप बटन डेंजरसली इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनका एक रिलेशनशिप होता है सीलिंग के साथ, मतलब जब बेड पर जाते हैं ये घंटों सीलिंग को देखते हैं और इन्हें नींद ही नहीं आती है। वेल, अगर आप जो है सेकेंड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं देन दिस अपडेट इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू, क्योंकि HMC यानी हमारा हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन हैज ओपन द न्यू स्लीप हेल्थ क्लिनिक एट हमद जनरल हॉस्पिटल। स्पेसिफिकली ये अडल्ट्स के लिए है जिन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सो अगर आपको परसिस्टेंट इंसोमिया है, बार बार रात में उठना, डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप, और एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग्स होती हैं, फिर डिस्टर्ब स्लीप शेड्यूल्स होते हैं आपके बहुत, और सोना जो है ना आपके लिए एक स्ट्रेस और एंजाइटी से एसोसिएट हो जाता है, देन ये सब कुछ ये स्लीप हेल्थ क्लिनिक में है ये असेस हो सकता है। वेल, ट्रीटमेंट इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोमिया, स्लीप हैबिट रेगुलेशन एंड मेडिकेशन जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। और इसका जो रेफरल है ये PHCC या रेलिवेंट HMC क्लिनिक्स के थ्रू ही होता है। बट नाउ द जेन्युइन क्वेश्चन टू मी फॉर यू इज के आप कौन सा टाइप के स्लीपर हो, मतलब बेड पे गए गुड नाइट दुनिया एकदम स्विच ऑफ, या फिर पिलो पर जाने के बाद इतने सारे ख्याल आते हैं यू स्टार्ट काउंटिंग स्टार्स, यू स्टार्ट काउंटिंग शीप और फिर भी नींद नहीं आती है। यू हैव टू टेल मी। 5000 1896 इज माई नंबर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई रियली वॉन्ट टू नो कि भाई मेरे कैटेगरी में कोई आता है भी क्या नहीं, कि या तुरंत गायब सो जाती हूँ मैं यार 10 सेकेंड में।
1: अलग तुझ में
0: अलग तो है भाई
1: कुछ है के दिखता।
0: Meanwhile, सचिन जिगर, राघव चैतन्य, वरुण जैन की आवाज में दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग यार ऑन मिर्ची।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर

0: वेल अरिजीत सिंह की आवाज में लापता लेडी से ये खूबसूरत गाना राइट योर ऑन मिर्ची एंड इट्स टाइम टू प्ले अ गेम. मतलब थोड़ा सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर है वो शुरू करते हुए यहाँ आज सवाल कुछ ऐसा है कि लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम खेलने वाले हैं जहाँ सीन जो है बहुत ही आसान आसान सा है. एक्चुअली लेट्स हियर इट आउट.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट
0: समझ आया कुछ आपको ये डायलॉग कौन सा है? शाहरुख खान की आवाज है ये समझ आया, साथ में मेरे ख्याल से जूही चावला की आवाज समझ आया. एंड एज ऑलवेज यहाँ पर जो लोग है पहले मैसेज करने वाले उन्होंने कर ही दिया है, यानी कुमैल और सुलेमान के मैसेज एग्जैक्टली एक साथ आते हैं और इन्होंने बिल्कुल सही कहा है. और अगर आपको थोड़ी सी और हिंट चाहिए सो वेट, आई विल प्ले दिस ट्रैक अगेन फॉर यू.
2: मैं बड़ा आदमी बनना चाहता, तुम बड़ा नहीं बनना चाहते थे. एक दिन तुम्हें ये कहा था ना कि दो कमजोर इंसान मिलकर एक क्या कहा था?
3: एक कामयाब जिंदगी नहीं बना
2: फिर.
3: लेकिन मैंने ये भी तो कहा था ना कि तुम किसी भी लड़की को खुश कर सकते
2: हो. बस साफ साफ कहना चाहिए ना कि तुम अपने बारे में मत कर.
0: ओके अब समझ में आया कुछ. मतलब नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग यार कि ये शाहरुख खान है, ये जूही चावला, वी ऑल नो दैट, बट इनकी बहुत सारी मूवीज भी तो आई है. बताओ फिर कौन सी मूवी का ये सीन है. 5000186 इज माय नंबर हियर. एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ सही कुछ गलत, और मजा आ जाता है जब गलत मैसेजेस भी आते हैं. सो वेल आई विल गो एंड रिप्लाई टू देम. मीनवाइल आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा नेहा कक्कड़ और गुरु रंधावा की आवाज में. A beautiful mashup right here on Mirchi's Hot.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: वेल मिन मिनी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। वेल आयरोनिकली आई फील कि अगर दिल तो छोटा सा है लेकिन इसकी आशाएं ना छोटी सी नहीं है। अगर छोटी सी रहती तो क्या हम जिंदगी के इस जद्दोजहद में लगे रहते? नहीं ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। यहाँ सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था जहाँ मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, रादर एक सीन सुनाया था, आपने गेस करना था बॉस ये सीन है कौन सी मूवी से। ठीक है चले यहाँ पर चले सीन सुन लेते हैं।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट।
0: आवाज क्यों नहीं आ रही है?
2: बड़ा आदमी बनना चाहता था। तुम बड़ा नहीं बनना चाहते थे ना? एक दिन तुम्हें कहा था ना कि दो कमजोर इंसान मिलकर एक का, क्या कहा था?
3: एक कामयाब जिंदगी नहीं बना
2: फिर।
3: लेकिन मैंने ये भी तो कहा था ना कि तुम किसी भी लड़की को खुश कर सकते हो।
2: लेकिन सीमा साफ साफ कहना चाहिए ना कि तुम अपने बारे में बात कर रही हो।
0: ओके यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस चीज को लेकर के डायलॉग कोई और बज रहा था और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो किसी और मूवी का था। यहाँ पर ये चीज थी जानबूझ का कंफ्यूज करने के लिए। वेल कौन सी मूवी है बहुत सारे लोगों ने इस वजह से कहा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक तो डर का सुनाई दे रहा है तो ये डर है। एंड ऑफकोर्स इसमें शाहरुख एंड जूही चावला दोनों सुनाई दे रहे थे और डर में भी दोनों है। बट अपेरेंटली दैट्स नॉट द ओनली मूवी दे हैव डन। दे हैव डन सो मेनी मूवीज टुगेदर है ना। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी है, डर है, एंड देन देयर आर सो उपेंद्र शर्मा का मैसेज यहाँ है कि डर बट नो इट्स रॉन्ग। एंड देन आई हैव कुमेल सुलेमान कुंवर पांडे जी इन्होंने भी डर कहा, फिर राजू बन गया जेंटलमैन कहा, फिर आई हैव संजीवा चार्ली एंड ये कौन है भाई अपना नाम लिखा करो ताकि मेरे लिए आसान हो जाता है यहाँ पर पढ़ना, सोनिया इफ आई एम राइट। आमीना का यहाँ पर मैसेज आया है, चार्ली एज आई सेड, फराज का मैसेज गलत है, अंसलाम का मैसेज है, अब्दुल रहमान का मैसेज है एंड यस इन सभी का कहना है कि आफरीन बॉस दिस इज यस बॉस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट दिस इज इंडीड यस बॉस। और अभी ना आपका फोन निकालो और व्हाट्सएप नंबर पे जाइए 5000196 हमारा जो है और मुझे बताइए क्या आप कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे यस बॉस का। गाना नंबर वन ये वाला,
4: मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं
0: अगर तुम कहो तो मैं ये गाना बजा सकती हूँ। गाना नंबर वन या फिर नंबर टू माई एब्सोल्यूट फेवरेट या आपको ये सुनना है। गाना नंबर तीन या गाना नंबर चार बताइए। सो मेनी गुड ऑप्शन ना। गाना नंबर वन मैं कोई ऐसा गीत गाओ या गाना नंबर टू चांद तारे या फिर गाना नंबर थ्री एक दिन आप। अब सो मेनी मैसेजेस यार यार मतलब कोई कह रहा है मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ, कोई चांद तारे कह रहा है। सो वेल आई थिंक सो नंबर वन विन्स यर क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने गाना नंबर वन कहा है। तो मैं अब आपके लिए ये गाना बजाने वाली हूँ अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में यस बॉस का ये खूबसूरत सा गाना। और मैं कोई ऐसा गीत तो गा नहीं सकती लेकिन बजा जरूर सकती हूँ जो आपको जरूर पसंद आए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ।

0: 89.6 मिर्ची वन. It's hot.
1: वेल, मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 8:02 की तरफ और आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रिंग को ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
3: मिर्ची मॉर्निंग्स विद मिर्ची आफ्रीन. इट्स हॉट.
0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: वेल साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में आवारापन टू का ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और जरा चलते हैं आज के गोल्ड रेट्स पर नजर डालते हैं।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल आज के अपडेट्स कुछ ऐसे हैं दैट 1 ग्राम पैंप लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 582 कतरी रियाल, वेयर एज 5 ग्राम पैंप गोल्ड बार इज फॉर 2725 कतरी रियाल। अगर 10 ग्राम गोल्ड बार की बात करें तो 5381 पर है। 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16634 एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61765। ये थे आज के गोल्ड रेट। सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन भाव पर नजर जरूर रहनी चाहिए। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardhan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Milci, murga.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे
1: बात करनी है?
2: भैया किससे बात?
1: अबे किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके,
1: नंबर चेक करके दोबारा मिला?
2: पागल
1: पागल
2: कौन बोल रहा?
1: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था,
3: इको आ रहा है, इको।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो, जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
2: भैया नंबर चेक,
1: नंबर चेक के मिला।
2: हेलो
1: हेलो,
2: भैया क्यों परेशान कर रहा,
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार?
2: पता नहीं कौन
1: है, पता नहीं कौन फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास,
2: पागल
1: कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका, बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि है,
3: रवि रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई,
3: अब आप खत्म कर दो यार।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

सॉन्ग यार, अब ऐसा ना कहो कि भाई मेरे नाम से गाना, इसीलिए मैं तारीफ कर रही हूँ. लेकिन आई एम श्योर द सॉन्ग हैज एब्सोल्युटली नो हेटर्स एट ऑल यार. राहत फतेह अली खान की आवाज़ और मोबिना के साथ ये ब्यूटीफुल सा गाना, एंड दिस सॉन्ग टेक्स अ रियली ब्यूटीफुल टर्न, एक अच्छा खासा ट्विस्ट ही ले लेता है जब मोबिना साथ सिंगिंग है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्रीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड 14th of September इट इज. और आज का दिन इज एग्जैक्टली, जैसे कह सकते हैं, वो दिन मंडे का दिन है जहाँ पर मंडे इज वेरी फॉग्ड डे, मैं कह सकती हूँ. थोड़ा सा ब्रेन फॉग सा हो जाता है कि यार ये काम है वो काम है, सडनली द डे कम्स क्रैशिंग ऑन यू, ऐसा कुछ फील होता है. लेकिन यार हमेशा से ये कहूँगी कि थोड़े से जब दिमाग हल्का रहता है ना तो थिंग्स स्टार्ट लुकिंग क्लियरर, है ना. बस इसी के साथ चलिए अगली सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज एक्सचेंज रेट्स की बातें करते हैं. चलिए वेल, आईपे का एक्सचेंज रेट जो है आज का ये कहता है दैट 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.19, वहीं जना पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.06. बांग्लादेशी टाका की बात करें तो इट इज एट 33.82, वे एज 31 रियाल के बदले मिल रहे हैं आपको श्रीलंकन रुपीज 90.15, एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.84. ये थे आज के एक्सचेंज रेट. घर भेजे पैसे तेरे सारी खुशियां, एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 1 एंड ओनली 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू

0: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: तेरे दिल में से कितनी भी गाने मैं सुना हो ना, आई फील इट्स नॉट जस्ट इनफ. वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिक एल्बम्स, और उसमें से आई थिंक सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना भी जरा जरा, ये गाना किसकी आवाज में? बॉम्बे जयश्री की आवाज में, राइट हियर ऑन मिर्ची. Well, it's time के आफरीन अपना पिटारा खोले, जिसे वो कहती है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. Yes, it's मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स. और यहाँ पर आज एक ऐसी गाने की धुन है, प्रोबेबली ये गाना थोड़ा सा अंडर रेटेड गाना है, बड़ा ही खूबसूरत गाना है. बट कई गाने ऐसे होते हैं ना, हम वो 90s वाले हैं भाई, जो गाना ऐसे शुरू भी नहीं होता है और हर एकदम सही गैस कर लेते कि ये कौन सा गाना बजने वाला है. सो वेल, गाने की बिल्कुल ओपनिंग लाइन सुनाने वाली हूँ, नॉट इवन लाइन्स, धुन सुनाने वाली हूँ, एंड यू हैव टू गैस विच सॉन्ग इज दिस. प्रोबेबली यू कैन टेल द मूवी नेम एज वेल, समथिंग अबाउट दिस सॉन्ग. यार ठीक है, सो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. ओके, क्वाइट डिफिकल्ट है, नहीं कुड बी इजी एज वेल. 5000 1896 इज माई नंबर, यू हैव टू गैस विच सॉन्ग वॉज दिस. 5000 1896. फिर से चाहिए थोड़ा सा हिंट? चलो फिर से सुनाती हूँ. ओके, 5000 1896, दैट्स इट. इससे ज्यादा नहीं सुना सकती हूँ, नहीं तो गाना ही शुरू हो जाएगा. सो वेल, बता दिया मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर, आपने बताना है ये कौन सा गाना है, कौन सी मूवी है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू कैन गिव, बिकॉज यार थोड़ा सा डिफिकल्ट था मैंने सोचा, बट आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे दो.
1: बदले तेरे
0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला गाना, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात करें, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: वेल, ये गाना आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में, सो ग्लैड टू हियर अरिजीत सिंह इन अ मूवी सॉन्ग यार. मतलब वो टाइम आ गया है जहाँ पर मेरे ख्याल से आगे अरिजीत सिंह के गाने जो है हमें मूवीज में नहीं सुनाई देंगे. वेल, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये जो गाना है ये खास रिक्वेस्ट किया था फुरकान ने. एंड फुरकान ना मुझे हर रोज ऑलमोस्ट ये गाना रिक्वेस्ट करते हैं. आई थिंक सो ही जस्ट लव्स दिस ट्रैक. सो आई होप यू आर हैप्पी नाउ फुरकान, ठीक है ना? और आज हमारे बॉलीवुड के धुरंधर कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है आफरीन, बहुत डिफिकल्ट है. अभी तो आप ही तो कहते थे आफरीन इतना इजी पीजी सवाल ना लेकर आओ, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ तो ये लो. लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना, कुछ तो रहते हैं बॉलीवुड का पगलूज आई कैन से जो बिल्कुल सही पकड़ लेते हैं. वेल, क्या बात कर रही हूँ मैं, वो लोग जो अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूँ, यहाँ पर हम खेल रहे थे जहां पर हमारे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आज एक धुन निकली है. ये धुन जो है गाने की शुरुआत, ओपनिंग म्यूजिक है. इससे आपने गेस करना था कि आखिर ये गाना है कौन सा. सो लेट्स हियर द म्यूजिक नाउ, ठीक है? ओके, इससे ज्यादा बजाऊंगी तो गाना ही शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो कौन सा गाना है, लेट्स हियर इट फ्रॉम आवर लिसनर.
1: हाय, गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग
1: मिर्ची.
0: हाँ जी,
1: जो गाना आपने प्ले किया था दैट इज फ्रॉम रॉक ऑन.
0: यस,
1: तुम्हारी मेरी बातें.
0: करेक्ट करेक्ट,
1: वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स इफ यू आस्क मी.
0: टोटली
1: रीसेंट टाइम्स फ्रॉम बॉलीवुड.
0: टोटली,
1: दैट्स द सॉन्ग.
0: थैंक यू सो मच.
1: Please play the song.
0: Surely, sure.
1: Radio Mirchi, it's always hot.
0: Thank you. And that was the answer. Ye Rock On ka gana hai. And not only our listener, inka naam kya hai? Inka naam apna naam nahi pata. Ajit. Ajit inka naam hai. Ajit David John. Inhone hi nahi. In fact, Rinsi ne bhi bilkul sahi pehchana hai. Raj ne bilkul sahi pehchana hai. Then I have someone here. Mohammed Yusuf Khan ne pehchana hai. Upendra Sharma ne bilkul sahi pehchana hai. That is the right answer. Rock On movie ka ye gana. Playing up next. डोमिनिक सेरेजो की आवाज में. एंड सच में यार, ये जो तुम्हारी मेरी बातें हैं ना, टू वे कनेक्शन और कम्युनिकेशन हमेशा यूं ही चलती रहे और सिर्फ कॉन्टेस्ट तक सीमित ना रहे, तो सोशल मीडिया पर भी है. एंजॉय दिस लवली ट्रैक ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: बालकनी का दरवाजा खुला रखता हूँ तो कबूतर अंदर आ जाते हैं और पूरा रूम गंदा कर देते हैं, क्या करूँ?
0: अरे तो कबूतरों को बोलो कि चप्पल बाहर निकाल कर आए।

0: बट प्यारा गाना और ऐसे गाने ना मतलब नए जमाने में यानी ये लेटेस्ट ट्रैक्स में से ना बहुत ऐसे कमी आते हैं विच एक्चुअली स्ट्राइक्स द राइट कॉर्ड ऑफ योर हार्ट है ना. एंड दैट इज द सॉन्ग वरुण फॉरएवर गाना वारू फॉरएवर रोमियो श्रेया घोषाल की आवाज में. मिर्ची घड़ी का इशारा फिलहाल हो रहा है सुबह के 9:02 की तरफ एंड अरिजीत सिंह कमिंग अप विद द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने फोन लिया है व्हाट्सएप चेक करने के लिए एंड सडनली यू फाइंड योरसेल्फ स्क्रॉलिंग ऑन अ शॉपिंग साइट? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरीन को. एंड ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्टिव ही नहीं बट मैं कह सकती हूँ बहुत ज्यादा कन्वीनियंस भी हमारे जिंदगी में लेकर आई है. एंड यू नो हाउ ऑनलाइन शॉपिंग हैज चेंज राइट. पहले हम सर्च करते थे कि हमें क्या चाहिए. नाउ वी ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट द ऐप टू नो आवर स्टाइल बिफोर वी डू. एंड टॉकिंग अबाउट फैशन, देयर इज अ न्यू नेम यू नीड टू नो. If you've been shopping on 6th Street, well, 6th Street is now IV. And it's not just a new name. IV brings together over 200,000 fashion styles with 100% authentic products from some of the biggest global brands all in one app. Plus, there's virtual try-on, an AI-powered fashion assistant, and my favorite bit, especially when you suddenly realize, yaar, kal ke liye to outfit hi nahi hai. Then, delivery sirf aur sirf in less than like 90 minutes. Wow, fashion getting smarter, faster and definitely more convenient. And IV is also the authentic fashion partner of our event, that is Suhani Shah Live in Qatar. So naam yaad rakhiyega, ab 6th Street is now IV. Basically, sirf wardrobe ka glow up nahi hua hai yahan par, shopping app ka bhi glow up ho gaya hai. Main hu Afreen aapke saath, mic se dil tak, right here on Mirchi, it's hot.

0: Mirci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. Na vidbala, burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में भेजे में बात नहीं आती यार, शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: साहब, मेरे से तो बातें सही से कर रहे हैं। हाँ? नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं।
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: वो तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीख ले। नहीं तमीज,
2: नहीं नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

जुबिंदर की आवाज में गैंगस्टर मूवी का ये गाना हैज टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एंड आई एम श्योर आपका भी ये फेवरेट वाला ही होगा एंड क्या मजा ही आ जाता है ना ये गाना सुन के। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्टर इन का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स और थोड़ा सा खेल जगत के बारे में बात करते हैं एंड कतर और स्पोर्ट्स का कनेक्शन तो आप जानते ही है कितना गहरा है लेकिन लेट मी टेल यू अब ये सिर्फ एक होस्ट कंट्री वाला नहीं रहा कतर इज नाउ एक्चुअली प्लेइंग टू विन। यस सीरियसली हम कतर की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप हो गया एशियन कप फॉर्मूला वन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एक लॉन्ग लिस्ट है इवेंट्स की जो कतर सक्सेसफुली होस्ट करते रहा है बट अब पिक्चर ना थोड़ी सी चेंज हो रही है। कतर सिर्फ दुनिया के एथलीट्स को स्टेज नहीं दे रहा है बल्कि अपने एथलीट्स के साथ पोडियम पर भी पहुंच रहा है। वेल लेट अस टॉक अबाउट द लेटेस्ट विन एंड दैट इज द एट द फीसूल यानी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप दोहा 2026 कतर की विशाल यखलिफ ने वुमेन्स ओवर 86 केजी कैटेगरी में एक नहीं तीन गोल्ड मेडल जीते हैं। क्या बात है भाई साहब। वेल In this, she lifted 125 kg in snatch, 155 kg in clean and jerk, giving her an overall total of 280 kg. Wow, and I think that's the biggest story here, okay? Qatar ab hosting champion se ab it's producing winning performances and that's clearly Qatar's journey evolving in its favor. Kya baat hai ab is cheez ke definitely hum yahan par witness reh chuke hain kahan se kahan tak Qatar aaya tha especially main keh sakti hu ki jab main saal 2013 mein aayi thi yes that was the initial time just haal hi mein Qatar ne FIFA bid mein jeeta tha and then uske baad ek alag hi evolution है एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ अस हैज विटनेस इट राइट। बस इतनी सी बात है एक अतर कुछ भी कर सकता है और यही गाना अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में नेक्स्ट प्लेइंग ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
1: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
0: क्या?
1: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

What a song, Rekha Bharadwaj ki awaaz ki, yes, Raghav Kaushik ka saath right here on Mirchi. Aur chaliye, waqt ho chala hai zara mic se dil tak aapke pahunchne ka. Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. And कभी notice किया है आपने? बचपन में हमें लगता था कि बड़े लोगों को ना सब कुछ पता होता है, और फिर बड़े होकर पता चला कि उन्हें भी सब कुछ पता नहीं था, बस उनके पास हमसे थोड़े से ज्यादा ना तजुर्बे थे. और जब खुद के पास कुछ तजुर्बे आ गए ना, तो समझ आता है कि ये ऐसे

0: ऐसा ही नहीं मिलते हैं, है ना। कुछ चीजें वक्त सिखा देता है तो कुछ लोग सिखा देते हैं। और बस इसी ख्याल पर आज की आफरीन की शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: शायरी तो अर्ज किया है, ये जो तजुर्बे मेरे पास है ये उधार नहीं किसी के, ये जो तजुर्बे मेरे पास है ये उधार नहीं किसी के, मैंने अपनी उम्र की मासूमियत देकर इन्हें खरीदा है। उम्र की मासूमियत देकर, हाउ डीप इज दैट, है ना। शायद इसीलिए बड़े होते होते ना हम चीज़ों को समझने तो बहुत लगते हैं, है ना, बस बिना सोचे उन पर यकीन करना थोड़ा कम कर देते हैं। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

देखिए कभी कभी ना हम हमारे फेवरेट फूड आइटम्स को वीकेंड के लिए रखते हैं, यार वीकेंड आएगा ना आराम से इत्मीनान से खाएंगे, लेकिन असली दिन तो उसका मंडे होना चाहिए। बिकॉज पूरा दिन मंडे ब्लूज सर्वाइव करने के बाद घर जाकर यू गॉट ट्रीट योर सेल्फ, एक रिवॉर्ड तो बनता है, और ऐसा रिवॉर्ड जहां आप आराम से सोफे पर हैं, पैर ऊपर आराम से, एंड यू कॉल एंड ऑर्डर पिज्जा, दैट्स हाउ इट शुड बी, है ना। एंड वेल वी आर स्पीकिंग ऑफ पिज्जा, पापा जॉन्स कतर ने अब एक नया पिज्जा लेके आया है, विच इज अ न्यू पैन पिज्जा एंड विच साउंड्स लाइक अ प्रॉपर कम्फर्ट फूड। यू गॉट अ क्रिस्पी गार्लिक पार्मेसन क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, अ सिक्स चीज ब्लेंड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चीज एज टू एज। उफ, मेरे तो मुंह में ही पानी आ गया ये सब सुन के। मतलब वो कॉर्नर स्लाइस लेने वाले भी इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पापा जॉन्स कॉल्स इट द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर, एंड यू विल आल्सो फाइंड पापा जॉन्स जॉइनिंग अस एज द एसोसिएट पार्टनर ऑफ सुहानी शाह लाइव इन कतर। सो मंडे यू डन इनफ, अब घर जाके रिलैक्स करिए, डिनर का डिसीजन पापा जॉन्स पे छोड़ सकते हैं, और मैं जो हूँ ऐसे ही कुछ करने वाली हूँ। फिलहाल के लिए आफरीन जो है साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो, टाटा बाय बाय, सायोनारा, हमेशा खुश रहिए और सुनते रहिएगा मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
1: अगर आपका दोस्त आपको बहुत ज्ञान दे रहा है तो इंग्लिश में उसे ये ना कहिए माइंड योर ओन बिजनेस, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए चल बे अपने बाप को मत सिखा।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची,

0: मांच की आवाज नंदी कौर का साथ एंड रफ्तार का ये रफ्तार वाला तड़का एंड सच कह रही हूँ विसल बजाने की बारी जो आ गई है आपकी जिंदगी में मैं जो शामिल हो चुकी हूँ मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे क्या ऐसी कोई कोशिश आपने कभी की है?
2: मिर्ची अंशु
0: यार पता है जब मैंने ये गाना सुना इंस्टेंटली अगर मैं किसी मोड में गई तो वो है फ्लैशबैक। एंड फ्लैशबैक के अलावा सबसे ज़्यादा अगर कोई दौर याद आया तो वो है कॉलेज टाइम्स। अगर मैं अपनी लाइफ के फेस को देखने की कोशिश करूँ एंड एक ऐसे दौर की बात करूँ जब मैं सबसे ज़्यादा नोटोरियस रही हूँ, जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा शरारतें की हैं, तो वो रहा है मेरे कॉलेज का टाइम। भाई सी आई वॉज ए यूटी, लेकिन हाँ पढ़ाई में अच्छी होने के अलावा शरारत में भी ना मैं नंबर वन हुआ करती थी। देखिए बात इतनी कि ना मुझे मेरा भाई जो है घर पर ही पहले सब कुछ पढ़ा चुका होता था, तो जब प्रोफेसर्स टीचर्स कॉलेज में पढ़ाया करते थे तो मुझे पता होता था ये सारी चीजें तो पता है। एंड मेरा एक अलग से ग्रुप होता था, वी वर लिटरली बैक बेंचर्स, स्टिल वी वर प्रोफेसर्स फेवरेट्स बिकॉज पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। लेकिन भाई मस्ती की बात करें, क्लास के पीछे बैठ के धीरे से सीटी बजाना, ये पता ना चले कि कहां से आवाज आ रही, नहीं ये मैं नहीं करती थी, ये मैं लोगों को उकसाती थी कि ऐसा तुम कुछ करो। बंक मारना, अगर ये कहा गया है कि कलर्स नहीं खेलना है फेस्टिविटीज के मौके पर तो सबसे पहले कलर मुझे ही लाना है एंड किसी और के बैग में डालना, ये सारी हरकतें जो है ना मैंने की है। एंड सच कहूँ आज जब मैं लाइफ के उस फेस को देखने की कोशिश करती हूँ कि माना डांट भी पड़ी, माना कि कुछ चीज़ें शायद गलत भी हो, लेकिन यार लाइफ का सबसे खूबसूरत दौर शायद वही रहा है। कितनी बेफिक्री की जिंदगी हुआ करती थी, है ना, ना जब किसी काम की टेंशन, ना किसी के आने जाने की टेंशन, ना कमाने की टेंशन। बिंदासों की लाइफ में एक ही काम करना है, पढ़ाई करना है और उसके अलावा मस्ती करनी है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक बात पूछने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं आपकी जिंदगी के स्कूल या कॉलेज टाइम की बात करूँ तो क्या ऐसी कोई मेमोरी आपके जहन पे है जब आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर या रूल्स एंड रेगुलेशंस के उस दायरे को लांघ कर कुछ ऐसी हरकतें शरारतें की हों जो गलत काम नहीं है शरारतें हैं। लेकिन आज जब आप सोचते हैं तो लगता है वो भी क्या दिन थे। ईगली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर मैसेजेस। मीनवाइल आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और अगर कोई इंजीनियर्स इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है या मुझे सुन रहे हैं तो भाई एक हाई फाइव तो बनता है डिजिटल वाला, पक्का गुड मॉर्निंग मैसेज तुम्हारे एंड से आना चाहिए। 5000 1896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल रोमी की आवाज श्रेया घोषाल का साथ एंड ये अगला बहुत ही सूथिंग सा प्यारा सा गाना आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: बंद

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: This show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow No. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: वेल अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। वैसे एक बात बता दूँ, ये गाना हमने सुना कॉकटेल 2 फिल्म में, लेकिन अगर चाहने की बात करें, किसी और की तरह न चाहने की, सबसे बढ़ के चाहने की बात करें, तो मुझे लगता है दुनिया का ये एक ऐसा रिश्ता है जो इस एहसास को बहुत खूबसूरत तरह से बयां करता है।
1: मिर्ची अंशु
0: बोल, सच कहूँ यार, जब जब मैं जिंदगी में प्यार की बात सोचूं, मोहब्बत की बात सोचूं, तो दिल में ना बहुत सारे जज्बात आते हैं, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। हमें लगता है कि लाइफ पार्टनर जो है एक ऐसा मिले जो हमें बहुत प्यार करे, हमें बहुत खुश रखे। ऐसा लगता है जितना प्यार दोस्तों से मिला है, उनकी तो बात ही कुछ निराली है, कुछ अलग ही है ना। लेकिन अगर ज़िंदगी के एक ऐसे रिश्ते की बात करूँ जो सही मायने में निस्वार्थ होकर तुम्हें प्यार करना जानता है, किसी भी हाल में तुम्हें अपनाना जानता है, हर एक हाल में तुम्हारे साथ खड़े होना जानता है, दुनिया शायद तुम्हारा साथ छोड़ दे, चाहे तुमसे कितना भी बड़ा कोई गुनाह भी क्यों ना हो जाए, फिर भी तुम्हारे साथ रहना जानता है, तो वो है तुम्हारे माँ बाप। यार, हमारे मम्मी पापा हमसे जितना प्यार करते हैं ना, शायद उसकी कहानी को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। पता है, आज के डेट में जब मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखती हूँ, प्लेयर्स को देखती हूँ, यू नो, एक्टर्स को देखती हूँ, ऐसा लगता है कि जब वो अपने ज़िंदगी के सक्सेस चार्ट में सबसे ऊपर पहुँच चुके होते हैं, तो लोग किस तरह से उनके स्पाउस, उनके पार्टनर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई इसकी वजह से पहुँचा। आई अग्री, आपके स्पाउस का, आपके पार्टनर का आपके जीवन में जो योगदान है वो तो किसी का हो ही नहीं सकता, तभी तो उन्हें जीवन साथी कहा जाता है ना। लेकिन बचपन के दौर में जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, एक कलाकार बड़ा हो रहा होता है, एक एथलीट अपनी जर्नी को ट्रेस कर रहा होता है, यार वो जो मेहनत कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसके माँ बाप जिस तरह के कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ बढ़ते हैं, जिस तरह के सैक्रिफाइसेस देते हैं ना, शायद पेरेंट्स के लिए वो शब्द सैक्रिफाइस नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हम तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी है जिसका चैप्टर कभी खुलता ही नहीं। पेरेंट्स जितने दिल से हमारे लिए सब कुछ करते हैं ना, मरते दम तक हमारे के अलावा हमारे बच्चों के लिए जो करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। एक बात कहना चाहूँगी, अगर तुम्हारे माँ बाप है ना, मेरे दोनों नहीं है इसलिए शायद उनकी अहमियत अब और भी ज़्यादा समझ में आती है, तो भाई जिंदगी का एक दिन ना बीते जब तुम्हारी उनसे बात ना हो। चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर खाना खाना याद है तो उससे ऊपर, उससे पहले अपने माँ बाप का नंबर हमेशा याद हो, हर दिन उनसे कनेक्ट करना। वेल, माँ बाप ने दुनिया के हर रिश्ते में कभी कोई हिसाब ना रखा, हर पल सिर्फ हमें दुआओं में याद रखा। मैं लाख भटक जाऊं जिंदगी की राहों में, ये यकीन है कि उन्होंने हर मोड़ पे मेरे लिए अपना दिल थाम रखा। तो मोहब्बत के दावेदार तो हजार मिल जाएंगे, वक्त बदलेगा तो कई चेहरे बदल जाएंगे, मगर माँ बाप को संभाल कर रखना है दोस्त, ये वो लोग हैं जो तुमसे हार कर भी तुम्हें जीता हुआ बताएंगे। बात सही लगी तो एक थैंक यू मैसेज तो बनता है। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल शंकर महादेवन की आवाज में अगला खूबसूरत सा गाना तुम्हारे लिए, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार

हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

Alka Yagnik ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is and what a beautiful message is being conveyed ki yaar aap jise tasveer mein niharte ho kabhi wo aapke saamne aaye wo kabhi us tasveer se nikal kar aapki ho jaye. I just absolutely love this track. वैसे इस गाने की बात करें तो फिल्म परदेस में आपने ये गाना सुना एंड क्या खूबसूरत शब्द आनंद बख्शी साहब के एंड साथ ही क्या कमाल लगी थी महिमा चौधरी इनकी महिमा ही कुछ अलग एंड हाय हमारे शाहरुख खान किंग खान यू ही थोड़ी ना यार देखो लेकिन एक बात होता है कि मिर्ची के जितने भी लिसनर्स हैं ना उनकी जिंदगी में राजशाही ट्रीटमेंट की कहीं कोई कमी ना होती मतलब हम जो हैं आपको किसी राजा से कम थोड़ी ना समझते हैं यार मिर्ची के राजा हैं आप हमारे दिल पे राज करते हैं नहीं वैसे ये सारी बातें जो है ना आपको मुझे कहनी चाहिए मेरे लिए दिल की रानी नॉल चलिए जी भाई साहब अगर बचपन के दिनों को याद करने की कोशिश करें फॉर दैट मैटर अगर आज की भी मैं बात करूँ तो जहाँ पे फैमिली ग्रुप्स मिले फ्रेंड्स मिले अगर ये एक गेम ना खेला जाए तो सच कह रही हूँ हम जो है इंडियन नहीं पाकिस्तानी नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट अंताक्षरी वेल अंताक्षरी में एक बहुत ही गजब का राउंड होता है यानी कि धुन राउंड जहाँ पे हर दिन मैं आपके बीच पेश करती हूँ किसी तो गाने की या मूवी की धुन आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना होता है कि ये गाना है तो है कौन सा एंड साथ ही किस फिल्म से है तो आज भी सिलसिला शुरू करने की बारी जो है आ चुकी है अगर करेक्ट आंसर आपने पहचान लिया तो फटाफट से भेजेंगे 5000 1896 पर 5000 1896 एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेजेस एज यूजुअल इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु एंड हबीबी

ऑलराइट, इतना सुनाने के बाद तो पता चल ही जाना चाहिए ये गाना है तो है कौन सा, बड़ा ही सूदिंग सा, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, साथ ही किस फिल्म से है, जवाब भेजो 5000 1896 waiting for your messages and keep listening to 89.6 Mirchi 1 Bandi Garam, Anshu, both are hot actually.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: The Mentalist, Suhani Shah.

0: बिल्कुल हनूर की खूबसूरत सी आवाज श्रेया घोषाल का साथ, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। अरे कोई ना, मैं बता देती हूँ। मिर्ची अंशु। देखो आप लोग जो ना कभी कोई मौका छोड़ते ही नहीं कि मैं आपसे अपने प्यार का इजहार ना करूं, मतलब जो इतनी खूबसूरत लिसनरशिप हो, इतने प्यारे लोग हो जो आपके सवाल का दिल से इतनी अच्छी तरह से जवाब दें, तो आपसे प्यार ना हो तो फिर क्या यू। मतलब से कुछ देर पहले एक खास सी धुन मैंने आपके बीच पेश की थी ना, आपको आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये किस गाने की है एंड साथ ही ये गाना किस फिल्म से है। अब जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है, फटाफट से धुन फिर से सुना दी जाए। All right, and I have received some phenomenal responses. वो आवाजें चलिए आप तक मैं पहुंचा दूं।
1: Good morning, Anshu. This is Sahil here. The movie name is Dirty Picture. Imran Hashmi, Vidya Balan, and the song is Ishq Sufiana. मेरे दिल को खुदा से जुदा कर दे। Na na na na na na na na na na na na na na na na na na मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना।
0: क्या बात यार, क्या आवाज। अब तुसी ने पूरी तरह से दिल जो है ना जीत लिया जी।
2: गुड मॉर्निंग अंशु, कैसी हैं आप? ठीक हैं? यूसुफ विद यू। ये सॉन्ग है इश्क सूफियाना और फिल्म है द डर्टी पिक्चर। पिक्चराइज वन विद्या बालन एंड इमरान हाशमी। ओके, थैंक यू।
0: वेल, थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों ने जो कहा, इनफैक्ट जितने लोगों ने जवाब लिखकर भेजा, आप सबने पूरी तरह से सही कहा। एंड एब्सोल्युटली लव यू फॉर दैट। द डर्टी पिक्चर एक ऐसी फिल्म जो कि रिलीज हुई साल 2011 में, एंड अगर इस गाने की मैं बात करूँ तो उसका मेल एंड फीमेल वर्जन दोनों ही कमाल। फीमेल संग बाय सुनिधि चौहान, मेल संग बाय कमाल खान, एंड इसके लिरिक्स थे रजत अरोरा के। एंड क्या कमाल की कॉम्पोजिशन बाय विशाल शेखर। अब ये गाना जो है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो कुछ इसलिए क्योंकि अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे मैंने इस गाने पे परफॉर्म किया था, एंड उसकी वेडिंग पे कोई तो स्पेशल गेस्ट आए थे जो कि नेशनल डांस कमेटी के मेंबर भी हुआ करते थे। एंड तब उन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम्हें तो जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड नॉट ट्राइंग टू बोस्ट, एंड यस मैंने किया था। एंड उस समय मैंने कैलाश खेर के गाने सैया पे परफॉर्म किया था। एंड हुआ कुछ इस तरह से था कि उस नेशनल डांस कॉम्पिटिशन में मेरे कॉलेज टाइम में मेरी रैंकिंग आई थी सेकेंड। सो दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी बिगैन फ्रॉम इश्क सुफियाना टू सैया एंड फाइनली वो विनिंग ट्रॉफी। चलिए जी, अभी फिलहाल एक काम कर दूं, सुनिधि चौहान की आवाज में इस वक्त फीमेल वर्जन इस प्यारे से गाने का आप तक पहुंचा दूं। पिक्चराइज्ड विद्या बालन एंड इमरान हाशमी, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: चलो आओ तुम्हें तुम्हारी माँ की अम्मा से मिलाएं। अरे नाना गुच्ची वाली नहीं, कोई और वाली।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिंदगी में किसी से कुछ भी छुपा ले, लेकिन अम्मी से छुपा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पता नहीं कौन सा रडार इनके दिमाग में फंसा हुआ होता है, फिट होता है कि हमारे दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पहचान जाती। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मम्मी भी ना जान पाए, झूठ के झांसे पे फंसा के जहां से तुम निकल पाए, ये मम्मी की ऐसी अम्मा है कि उनकी नानी पर नानी क्या सबकी अम्मा है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट की बात करें, मैजिशियन की बात करें, तो उसमें सीधा अगर किसी का नाम आता है तो वो है सुहानी शाह। एंड अब तक इतनी बार रट्टा मार चुके हो कि तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि 25th ऑफ सितंबर को कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में सुहानी शाह पहली बार परफॉर्म करने आने वाली। तो जब ये बात अच्छी तरह से पता है तो सिर्फ आंसर को रट के क्या करोगे एग्जाम में, जब तक लिखोगे नहीं तो नंबर कहां से मिलेंगे। तो इस वक्त नंबर मिलेंगे एंटरटेनमेंट वाले जब प्लेटफॉर्म्स में जाके टिकट तुम अपनी बुक करोगे। क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट या स्नूनो सिटी जाए फटाफट से अपनी टिकट्स जो है वो सिक्योर करके आए। दिस इज वन सच इवेंट दैट यू वुड नॉट वांट टू मिस एट ऑल। एंटरटेनमेंट भी है, मैजिक भी है, लर्निंग भी है एंड खूब सारा धमाल भी है। मिर्ची तो लगेगी जब सबका सच सामने आएगा। सुहानी शाह लाइफ, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। विशाल मिश्रा की आवाज तबाही। भाई ये बंदी तबाही है यार।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rambala.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से, बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर। सर आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का।
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर। 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात चिल्ला के भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार। आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
5: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटा।
7: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

देखिए आस्था की ना नकासा की आवाज में गजब का गाना तो आपने और हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन ये कोई खास बात है जो इस वक्त मैं आप तक पहुंचाई दूं। वेल, इस वक्त कतर को देखने की हम कोशिश करें तो बैक टू बैक अब एक्साइटिंग इवेंट्स का सैलाब एंड सिलसिला जो है अब कतर में शुरू होने जा रहा है। फिर चाहे मैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स की बात करूँ, कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स की बात करूँ, या तो फिर एग्जीबिशन एंड एक्सपोज की बात करूँ, एंड बस अगर आने वाले महीने में आप कतर में कुछ देख पाएंगे सो येट अगैन मेडिकल इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्क्लेव एंड कॉन्फ्रेंसेज विच इज गोइंग टू बी हैपनिंग सून। अब ये क्या है, कैसा है, इस पे सारी की सारी बातें जो है हम और भी बेहतर तरह से आने वाले दिनों में समझेंगे, लेकिन इतना समझ जाएं अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखने की कोशिश करें तो कतर ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है भैया, इस बात की कहानी जो है ना आप और हम बहुत अच्छी तरह से बयां कर सकते हैं भाई। जितनी फीजिबिलिटी, जितनी गजब की कन्वीनियंस हमें हेल्थ केयर सेक्टर में कतर को देखने को मिली है, आई रियली रिमेंबर कि कहीं और पे मुझे इतना फीजिबल एक्सपीरियंस महसूस हुआ। इनफैक्ट जो कुछ महीनों पहले अनाउंसमेंट हुआ कि अगर हम मेडिसिन की भी बात करें तो बहुत जल्द आप बहुत सारी मेडिसिन जो है कतर में मैन्युफैक्चर होते हुए देखेंगे, कि अब तक मेडिसिन जो है मैक्सिमम बाहर से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर कतर जो है इन हाउस मेडिसिन पूरी की पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का हब भी बनने वाला है। तो बस इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को आप और हम मिलकर ट्रेस करते रहेंगे, लेकिन अभी जो है आप बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे, मुझे सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग मैसेज जो है वो जरूर भेजेंगे 5000 1896। लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु। एंजॉय

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: What a lovely track it is. देखो मुझे तो पता है लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं ये बड़ी बात है.
1: मिर्ची अंशु
0: भाई सच कह रही हूँ. मतलब जीवन में मैंने जितना हिसाब किताब ना रखा हो ना, कतर आने के बाद पूरा का पूरा फिनोमेना जो है मेरे लिए तो बदल चुका है. एंड यार लाइफ में खुशियों को देखने की कोशिश करूँ ना इन दिनों, तो मुझे जेन्युइनली बहुत बड़ी बातें खुशी नहीं देती. लेकिन हाँ, ये एक ऐसी बात है जो मुझे डेफिनेटली खुश करती है कि मुझे पता हो कि भाई मैंने महीने के एंड में पैसे नहीं भेजे, मैं उसे संभाल के रखी हुई थी किसी रीज़न से, या मुझे उम्मीद थी कि आगे अच्छे एक्सचेंज रेट्स मिलेंगे. एंड जेन्युइनली ऐसा कुछ हो जाए तो अगर आपकी खुशी इस वक्त मेरी खुशी से मिलती है तो इतना समझ जाए आपका और मेरा सेलिब्रेट करने का वक्त आ चला है. जरा देखिए आज आई पे मनी में पैसा क्या बोलता है. अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट लंकन रुपीस डंका बजाते हुए पहुंच चुके हैं 90.15 पर. एंड इसके साथ ही अगर मैं बात करूं इंडियन रुपीस की जी, तो इतना समझ जाएं कि येट अगेन यहां पे क्राइटेरिया काफी कमाल है. 26.32 की हम बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इस वक्त बात करने की कोशिश करें भाई साहब पाकिस्तानी रुपीज की, तो मैं तो कहती हूँ फटाफट से पैसे भेजने की तैयारी कर दो. इट इज प्राइस एट 76.16. बांग्लादेशी टका 33.67 एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.32. तो बस घर भेजे पैसे ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स ऑल एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: माई फेवरेट फिल्म्स नेम।
1: फिल्म का नाम था तक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज भाई साहब. ऐसे गाने जो है ना सीधा आपके दिल से कानों के जरिए रूह तक उतरते हैं. चलिए, ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो आपने और हमने एंजॉय कर लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त आपके कानों तक पढ़ी जानी चाहिए.
1: मिर्ची अंशु.
0: अरे किसने कहा कि गर्मी है तो घर पे बैठो, एंड ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करना है तो बिना एलपीजी के ऑमलेट बनाने की कोशिश करो. भाई साहब डोंट यू फॉरगेट, अगर आप कहीं रहते हैं तो उस जगह का नाम है दोहा कतर. एंड इतना बता दूं, चूंकि गर्मी का मौसम अभी भी चल रहा है वो हम जानते हैं कि कुछ दिनों में ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप होगा एंड जिंदगी में अच्छे वाले दिन और अच्छी तरह से आएंगे, लेकिन उसके पहले आपके एंटरटेनमेंट में कहीं कोई कमी ना हो इसके लिए कतर ने पूरा का पूरा इंतजाम जो है ना वो कर रखा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कतर टूरिज्म. अगर हम समर प्रोग्राम की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो टूरिज्म को समर में भी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज अब कतर में कंडक्ट की जाएंगी. जहां पे एक तरफ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं जहां पे लोगों का अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज येट अगेन द एंटायर नेशन इज गेटिंग बैक टू बिजनेस, बैक टू फॉर्म, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. अगर कॉन्सर्ट्स एंड इवेंट्स की बात करें तो इनका सैलाब ऑलरेडी इस महीने से शुरू हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज, समिट्स के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाएंगी जो स्पोर्ट्स एंड लेजर के लिए भी आपको और हमको बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने वाली हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? काम का कैलेंडर जो है ना, बॉस को बोलो थोड़ा वेट करेंगे. बोला अभी मैं अपने एंटरटेनमेंट का कैलेंडर सेट कर रहा हूं एंड वो कराने के लिए मैं हूं ना. कुछ देर में बताते हैं कतर में क्या कुछ हो रहा है. मीनवाइल चूंकि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो क्यों ना विशाल डिडलानी नेहा भासन की आवाज में अगला गाना आपके रास्ते मेरे दिल से एंजॉय. स्वैग से स्वागत बंदी का नाम अंशु.

0: मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये कहानी तुम्हारी है जो मैंने अपनी जुबानी बस सुनाई है कि यही पहनने को कुछ भी नहीं है, या जब भी किसी इवेंट में जाना हो या सिंपली कहीं बाहर ही क्यों ना जाना हो, सबसे पहले मेरा दिल मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि बेटा पहनोगी क्या। जब मैं वार्डरोब खोलूं तो लगता है बहुत कुछ डेकोरेटेड है। घर वाले ये बताने की जताने की सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि बेटा आप बोल क्या नहीं है, लेकिन हाँ आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं डिस्पाइट द एफर्ट्स द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि मैं पहनूं क्या। देखिए ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में अब पैनिक नहीं करना है, आई वी करना है। गेस आई एम टॉकिंग अबाउट योर ऑथेंटिक फैशन पार्टनर। यार योर फेवरेट सिक्स्थ स्ट्रीट इज नाउ आई वी। तो बात इतनी है, नाम जो है वो नया है लेकिन फैशन का प्यार पूरा वही है, लेकिन फास्टर है, बिगर है एंड वे मोर स्टाइलिश है। लेकिन आखिरकार मैंने इसे ऑथेंटिक फैशन पार्टनर क्यों कहा? भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको 200,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिले, डिलीवरी की बात करें तो अक्रॉस कतर 90 मिनट्स में डिलीवरी हो जाए, भाई लाइटनिंग स्पीड। तो इसे आप ऑथेंटिक फैशन पार्टनर ना कहें तो फिर क्या ही कहें। तो बस आई वी एक्सप्लोर करने का वक्त जो है वो आ ही चला है, एंड साथ ही अपने कबर्ड में एक और नया आइटम भी एड करने का वक्त। लेट्स गेट शॉपिंग, एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabala. Burga, burga. La vizba la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
3: भैया किससे बात?
2: अबे किससे बात करनी है?
3: भैया नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल
3: कौन बोल रहा?
2: पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो, जेंट्स आने पर यहाँ को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
3: भैया
2: नंबर देख के मिला।
3: हेलो
2: हेलो,
3: भैया क्यों
2: परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है, फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
3: पागल
2: कहीं का।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने भाई। आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot।
7: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
8: The show was absolutely amazing.
9: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
10: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: यार इतना समझ जाओ, ये है तुम्हारी बीवी को खुश करने की निंजा टेक्निक।
1: मिर्ची अंशु
0: यार जो काम तुम क्या तुम्हारा पूरा खानदान ना कर पाया, वो काम जो है ना ये एक बिस्किट कर सकता है। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे खफा है, दुनिया में कोई मना पाए या ना बनाए, लेकिन इस बिस्किट में इतना ताकत है कि उसे जरूर मना जाए। वेल, मैं सोने के बिस्किट की बात करी, वैसे मौका भी है, दस्तूर भी। जरा देखें अल्परदान एक्सचेंज अपडेट्स में आज गोल्ड रेट क्या कहता है।
2: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज प्राइस्ड एट ₹3 582। 5 ग्राम्स की बात करूं, इट इज प्राइस्ड एट ₹2 725। 10 ग्राम्स पे नजर डालें, सो इट इज प्राइस्ड एट ₹5 381। ये वाला तुम मेरे लिए जरूर खरीद सकते हो, आई मीन 1 ounce इज टुडे प्राइस्ड एट ₹16 634। एंड साथ ही अगर मैं 10 तोले की बात करूं, सो इट इज प्राइस्ड एट ₹61 765। जाइए परचेसिंग करके आइए, अगर लगे अपनी बीवी के लिए नहीं करना तो औरों की बीवी के लिए करके आइए। एंजॉय। बिंदी का नाम अंशु।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्परदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: देखो तुम खुद भी आना एंड साथ अपनी घर वाली को भी जरूर लेकर आना। पक्की बात है, एक पंत दो काज जो है ना यहाँ पे हो ही जाना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बस यही है कि वाइफ्स को अक्सर लगता है कि उनके हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानती हैं, एंड हस्बैंड्स को बस यही लगता है कि काश तुम समझ पाती कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो क्या ही चल रहा है। अब दोनों के मसले हैं ना, ये हल करने का मेरे पास एक तरीका है एंड 101% है। तारीख याद रखो 25th of September। जगह भी बता रही हूँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। भाई साहब, एक ऐसी बंदी को मैं लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मैरिज की काउंसलिंग भी कर देगी एंड किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सच सच बताकर तुम्हारी जिंदगी में राहत और सुकून जरूर लेकर आएगी। वो सब कुछ जानती है एंड हस्बैंड्स को बस यही लगता है कि काश तुम समझ पाती कि मेरे दिमाग में चल रहा है तो क्या ही चल रहा है। अब दोनों के मसले हैं ना, ये हल करने का मेरे पास एक तरीका है एंड 101% है। तारीख याद रखो 25th of September। जगह भी बता रही हूँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर। भाई साहब, एक ऐसी बंदी को मैं लेकर आ रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में मैरिज की काउंसलिंग भी कर देगी एंड किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: This show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: अरे भाई एक ही बात कहना चाहूंगी, प्लानिंग तो फिर भी बाद में हो जाएगी, टिकट की बुकिंग जो है वो अभी के अभी करना है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अब जब मौका भी है दस्तूर भी तो इंसान हाथ से जाने दे तो क्यों ही जाने दे। वाले इस वक्त अगर मैं कतर की नेशनल एयरलाइंस यानी कि कतर एयरवेज की बात करूं तो आपकी और मेरी जिंदगी में ये बहुत ही स्पेशल सा ऑफर लेकर आए हैं और ये ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ 17th of September तक वैलिड है। लेकिन ऑफर है क्या भाई साहब, अगर आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं 9th of December तक दोहा से कहीं एंड कहीं से वापस दोहा, तो इतना समझ जाए इस वक्त अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको मिलेगा तकरीबन 20% तक का डिस्काउंट ऑन इकोनॉमी एंड बिजनेस क्लास टिकट्स। क्या बात यार। लेकिन देखिए बात इतनी है कि आपको बुकिंग जो है वो 17th of September के पहले ही करनी है, तो जाइए फटाफट से इस ऑफर का फायदा उठा के आइए। लेकिन सच कहूं जितने पैसे बच रहे हैं ना, जहां भी जा रहे हो अपने देश की मिठाई जो है मेरे लिए जरूर लेकर आओगे, तुम जो भी खाओगे बच्चे का नहीं, तुम याद रखना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
1: आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कुछ नहीं आया, तो इंग्लिश में आप ये ना कहिए थैंक गॉड इट्स नॉर्मल, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए यार पैसे बर्बाद हो गए।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्रॉस्ड कि इस ट्रेंड को अच्छे से फॉलो किया जाए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मैं वो इंस्टाग्राम पे चल रहे 80s ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, नहीं यार, मैं तो बात कर रही हूँ बुक एडेप्टेशन के ट्रेंड की। बाबू मोशाए। सो बेसिकली जिस हिसाब से हॉलीवुड की फिल्मों को इंडिया में भी प्यार मिल रहा है, तो मैंने सोचा एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म की बात करूं जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं, क्योंकि जिस नॉवल से ये मूवी इंस्पायर्ड है, मैं करंटली वो नॉवल पढ़ रही हूं, और उसका नाम है द लव हाइपोथेसिस बाय एली हेजलवुड, जिसको डायरेक्ट किया है डायरेक्टर क्लेयर स्कैनलन ने। इनके कुछ काम के नाम आपको याद दिलाना चाहती हूँ। फिल्म सेट इट अप याद होगा आपको, साल 2018 में आई थी। इनफैक्ट आपको अगर अक्लेम्ड कॉमेडी सीरीज लाइक द ऑफिस, ब्रुकलिन 99 या द गुड प्लेस पसंद है, तो बाबू मोशाए डायरेक्टर क्लेयर ने इन सीरीज के एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए हैं। सो अगर इस फिल्म के प्रमाइस की बात करें ना, तो यहाँ फेक डेटिंग अरेंजमेंट की जाती है बिटवीन अ पीएचडी कैंडिडेट एंड एन इंटिमिडेटिंग प्रोफेसर, जो इवेंचुअली रियल केमिस्ट्री में तब्दील कर जाती है। और अगर ये कहानी का कॉन्टेक्स्ट सुन के आपके दिमाग में लड्डू फूट रहे हैं, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, ये मूवी प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम करना शुरू होगी फ्रॉम द 23rd of September। तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। बाकी ऐसे ही कोई अडेप्टेड मूवी अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mergi! Buscabana, buscabana, sacabana, rabana! Burga, burga! Na viva la burga! Mergi, burga!
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार, शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं।
2: नहीं, नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली नहीं कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं, बात नहीं, तमीज सीख ले।
1: नहीं, तमीज नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया।
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तृप्ति डिमरी और सैफ अली खान को साथ देखना चाहोगे? वेल, ये सुन के ही आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार। सो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बी टाउन की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमल अमरोही के ऊपर ना एक बायोपिक बन रही है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें कमल अमरोही का रोल निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी होंगी मीना कुमारी। सो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल शादी। कमल अमरोही 34 के थे, मीना कुमारी 18 की थी जब ये दोनों मिले और उसके एक साल बाद दोनों की शादी भी हो गई। बट सुनने में आता है कि कमल अमरोही वॉज क्वाइट अब्यूजिव विद मीना कुमारी, जिस वजह से 8 साल बाद इनकी शादी टूट भी गई। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनके तरफ से तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आई है कि भाई ये सारी चीजें जो फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट इमेजिन सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी टुगेदर, अच्छा लगेगा यार। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक विलेन के अवतार में, और ये विलेन नॉर्मल सा नहीं होगा। हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव ह्यूमर, मैडनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज द कोर। वेल, इन तीन चीजों के लिए तो अक्षय कुमार को ऐसे भी हम प्यार करते हैं यार। भाई ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं धमाल मचा रही है ये फिल्म। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की, जो 200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। बाकी इस सीरीज के बिग स्क्रीन अडेप्टेशन को जिस हिसाब से ग्लोबली रिसीव किया है ऑडियंस ने, स्पीक्स वॉल्यूम। वरना तो रिसेंटली प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हैवान भी आई, जिसके थ्रू सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 सालों बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आए। बट मूवी देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि यार अपनी आंखें फोड़ लूं। एनीवे, मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड यस लाइक एवरी डे इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्म जी। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज मेरे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी, कैसे हैं सर?
3: बढ़िया, बताइए।
0: ओके, मुझे तो डर लग रहा है आपके साथ ये गेम खेलने में, पता चला आपने एक बार में ही खत्म कर दिया गेम मेरा।
3: नहीं,
0: मुझे ये बात बोलनी चाहिए आपको, आप छोड़ते ही नहीं, आपके अंदर का फिल्मची जो है ना एकदम बाहर ही आ जाता है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज कैसा होता है।
3: देखते हैं
0: जी। करीना और शाहिद की लास्ट फिल्म एक साथ,
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में हॉकी प्लेयर कौन है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट किस फिल्म में तमिल स्टूडेंट बनी है?
3: टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर के साथ आई थी।
0: क्या बात है, टू स्टेट्स में मेल लीड कौन है?
3: अर्जुन कपूर।
0: अर्जुन कपूर की फिल्म जिसमें वो हाउस हस्बैंड बने हैं,
3: की एंड का
0: में किया साहनी का रोल किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर किस फिल्म में भैया जी की सेक्रेटरी बनी है?
3: टशन।
0: बिल्कुल टशन। ओके, आगे पूछती हूँ, फिल्म में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
3: अक्षय कुमार।
0: नहीं सर, यहाँ पे आप गलत हो गए, यहाँ पे चेन ब्रेक करूंगी मैं।
3: करो।
0: बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक पहुँचाया है उसके लिए ये टैग तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: हाँ जी, तो आप फिलहाल जो मुझे सुन रहे हैं ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, गेम कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: मिर्ची पे खेला हो बे।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: एक्सक्यूज मी, यहाँ इस खेल में हम मिर्ची फिलमची ढूंढते हैं, आप अपने दिमाग के घोड़े इधर उधर ना दौड़ाएं। हाय, सो बेसिकली इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिलमची। इस गेम की शुरुआत हमने की थी दीपक जी के साथ और अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं हार्दिक। तो हार्दिक, कैसे हो आप?
4: मस्त हूँ, आप बताओ।
3: अरे वाह, मस्त सुन के मैं भी मस्त हूँ अब तो। द क्वेश्चन वॉज की फिल्म टशन में भैया जी का रोल किसने प्ले किया है?
4: अनिल कपूर।
3: वेरी नाइस। अनिल कपूर की फिल्म जो टोटली क्रूज पे शूट की गई है,
4: दिल धड़कने दो।
3: वाओ, दिल धड़कने दो में रणवीर सिंह की बहन कौन बनी है?
4: प्रियंका चोपड़ा।
3: प्रियंका चोपड़ा का आइटम सॉन्ग किस मूवी में है जिसमें वो रख पॉकेट में घोड़ा दे घोड़े को लगाम बोलती है?
4: रामलीला।
3: वेरी नाइस। गोलियों की रासलीला रामलीला में लीला का रोल किसने प्ले किया है?
4: दीपिका।
3: दीपिका किस फिल्म में झूमर के नीचे मरती है?
4: ओम शांति ओम।
3: बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम में दीपिका को झूमर के नीचे मारता कौन है?
4: अर्जुन रामपाल अपने मेजर इकबाल।
3: मेरा अगला सवाल यही है, अर्जुन रामपाल ISI एजेंट मेजर इकबाल किस फिल्म में बने?
4: धुरंधर।
3: धुरंधर में हमजा को अंडरकवर एजेंट कौन बनाता है?
4: आर माधवन।
3: बहुत बढ़िया। आर माधवन को फोटोग्राफी का शौक किस फिल्म में?
4: थ्री इडियट्स ऑफ कोर्स।
3: थ्री इडियट्स में रैंचो कौन है?
4: आमिर खान।
3: आमिर खान किस फिल्म में पूरे इंडिया में भागते रहते हैं?
4: पूरे इंडिया में भागते रहते हैं,
3: हाँ जी,
4: लाल सिंह चड्ढा।
3: बहुत ही उम्दा। इसी के साथ आपको भी ये टैग बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
3: वैसे पूरी दुनिया एक चीज से भागती है, वो है शादी, और इस चीज से आमिर खान तो बिल्कुल नहीं भागते यार। तभी तो 5th ऑफ जुलाई को चौथी बार परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विशिंग हिम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अहेड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। आई ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: मिर्ची के साथ बनो इंडिपेंडेंट।
1: आपके दोस्त ने नया टैटू बनवाया तो इंग्लिश में तारीफ करते हुए ये ना कहिए नाइस टैटू, बल्कि इंडिपेंडेंट बनिए और कहिए लो गई सरकारी नौकरी।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची।

0: आते हैं।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
3: ऑफिशियल रीमेक्स से ज्यादा अनऑफिशियल रीमेक्स में विश्वास करती है हमारी इंडस्ट्री।
4: श्रुति श्रुति
5: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
3: बाबू मोशाय, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी ऑफिशियल रीमेक्स नहीं बनी है ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, उससे ज्यादा अनऑफिशियल रीमेक्स बन के तैयार हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों की बात करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले वील टॉक अबाउट डू यू वांट अ पार्टनर। ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, लव मी से। ओके ओके ओके, साल 2007 में आई फिल्म पार्टनर की बात कर रही हूँ मैं, जिसको डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, एंड दिस फिल्म वॉज इंस्पायर्ड बाय द हॉलीवुड मूवी हिच। सो बेसिकली डेविड धवन ने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि उन्होंने फिल्म पार्टनर को हिच से कॉपी नहीं किया है, बट जब उन्होंने हिच देखी तो एक आइडिया उनके दिमाग में आया, जिसको उन्होंने अपने तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वीव किया एंड देन मेड पार्टनर। भाई अगर आपको इस बात की सच्चाई में गहराई में जाना है तो प्लीज पहले फिल्म हिच देखो, उसके बाद फिल्म पार्टनर देख लेना, स्टारिंग गोविंदा, सलमान खान, लारा दत्ता एंड कटरीना कैफ इन लीड रोल्स। फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे इस लिस्ट में अभी और भी चार फिल्म्स की बात करने वाली हूं मैं, बट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Gabbana.
1: Burka, burka. La virtua la burka.
2: Mirchi, burka.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yeah,
4: it's Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करने क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: मिलता है।
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
3: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
4: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं। मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The mentalist Suhani Shah.

0: खरीदने का बीड़ा कौन उठाएगा?
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही थॉट आता होगा कुछ डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के दिमाग में जब वो किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाने की सोचते होंगे। हाँ, वैसे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑफिशियल रीमेक्स बने हैं ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स आफ्टर परचेजिंग द राइट्स ऑफ द ओरिजिनल मूवी, जैसे लाल सिंह चड्ढा जो टॉम हैंक्स स्टारर फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। बट अदर देन ऑफिशियल रीमेक्स, बहुत सारे अनऑफिशियल रीमेक्स हैं जिनकी बात मैं आज कर रही हूं पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू। स्पेशली इन मूवीज को इंस्पायर्ड मूवीज बोलते हैं। खैर, इस लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म पार्टनर जो साल 2007 में आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म ब्लैक जो साल 2005 में आई थी। संजय लीला भंसाली डायरेक्टोरियल, ये फिल्म इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द लाइफ ऑफ हेलन केलर and her tutor. So all in all, the movie was inspired by Keller's autobiography and a 1962 American film jiska naam tha The Miracle Worker, jo apparently based tha usi autobiography ke upar. So starring Amitabh Bachchan and Rani Mukherjee in the lead roles, the film narrates the tale of a deaf and blind student and her elderly teacher. काफी खूबसूरत फिल्म थी ये, बट जब आप द मिरेकल वर्कर देखेंगे या फिर हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। बट आई वुड से दैट ब्लैक डिड डू जस्टिस विद केलर्स ऑटोबायोग्राफी। मूविंग ऑन इन द लिस्ट नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म हे बेबी जो साल 2007 में आई थी। सो साजिद खान डायरेक्टोरियल इस फिल्म में, अक्षय कुमार, फरदीन खान और रितेश देशमुख लीड रोल्स में नजर आए। एंड दिस फिल्म इज लूजली बेस्ड ऑन अ मलयालम फिल्म विच इन टर्न वॉज अडेप्टेड फ्रॉम द हॉलीवुड फिल्म थ्री मैन एंड अ बेबी। वेल, ये फिल्म रिवॉल्व करती है तीन बैचलर्स की लाइफ के इर्द गिर्द जिनकी जिंदगी एकदम से चेंज हो जाती है विद द अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ अ बेबी एट देयर डोर स्टेप्स। कसम से बता रही हूँ, थ्री मैन एंड अ बेबी अगर आप देख लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हे बेबी इज अ कट टू कट कॉपी। इंस्पिरेशन छोड़ो, एक एक चीज वहां से उठा के यहाँ चिपकाई गई है। बट की फर्क पैंदा है, हमें तो एंटरटेनमेंट से मतलब है और फिल्म हे बेबी ने एक्चुअल सेंस में हमें काफी ज्यादा एंटरटेन किया था यार। वेल, बाबू मोशाय, अभी मेरी इस लिस्ट में और भी दो फिल्मों की बात बाकी है बट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन नर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी इट्स हॉट।

0: पुराने टाइम से होता आ रहा है ये।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। बाबू मोशाय, आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं कुछ अनऑफिशियल रीमेक्स ऑफ हॉलीवुड फिल्मों की बात कर रही हूँ। और ये काफी टाइम से होता आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कुछ हॉलीवुड फिल्मों का अनऑफिशियल रीमेक्स तैयार करते हैं, बॉलीवुड रीमेक्स तैयार करते हैं इन द नेम ऑफ इंस्पिरेशन। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म पार्टनर, देन वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म ब्लैक एंड हे बेबी। अब नंबर चार पे मैं बात करना चाहती हूँ 1997 में आई फिल्म चाची 420। वो गाना याद है, चुप चुपड़ी चाची चाची रे। और किसको पता था कि कमल हसन स्टारर ये कल्ट क्लासिक इज अ रीमेक ऑफ हसन्स 1996 तमिल मूवी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों ही फिल्में जो रही ना, हिंदी हो या तमिल हो, उसमें कमल हसन का जो कैरेक्टर है इट इज रफली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ रॉबिन विलियम्स फ्रॉम द फिल्म मिसेस डाउटफायर। हाँ, इस फिल्म को हम देसी वर्जन बोल सकते हैं ऑफ दैट फिल्म, बट ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे मुझे ये फिल्म उसके ह्यूमर के लिए काफी ज्यादा पसंद आई थी। मतलब जो एलिमेंट्स इसमें डाले गए हैं, ओ हो हो हो हो। खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर पांच पे फिल्म गजनी के बारे में, जो साल 2008 में आई थी। और अगर आपको लगता है कि ये फिल्म एक तमिल फिल्म से इंस्पायर्ड है, नहीं नहीं नहीं, आमिर खान की ये मूवी जिसको डायरेक्ट किया था ए आर मुरुगदॉस ने, वो ऑफकोर्स 2005 में आई तमिल फिल्म का रीमेक है with the same name directed by the same director, but the Tamil film was inspired by Christopher Nolan's Memento. In fact, ek interview mein Nolan ne ye reveal kiya ki he hadn't seen this Tamil or Hindi film but had heard of its commercial success. But yaar jo bhi bolo, ओरिजिनल फिल्म की जो बात होती है ना, वो ऑफिशियल या अनऑफिशियल रीमेक्स में निखर के नहीं आ पाती, जिसका रीसेंट एग्जांपल लाल सिंह चड्ढा की फेलियर से सेट हो चुका है। खैर, अगर आप भी मेरी इस लिस्ट में और कोई फिल्म डालना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। मीनवाइल, एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। तृप्ति डिमरी और सैफ अली खान को साथ देखना चाहोगे? वेल, ये सुन के ही आई एम क्वाइट एक्साइटेड यार। सो बेसिकली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बी टाउन की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमल अमरोही के ऊपर ना एक बायोपिक बन रही है। इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज जिसमें कमल अमरोही का रोल निभाते नजर आएंगे सैफ अली खान और तृप्ति डिमरी होंगी मीना कुमारी। सो बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल शादी। कमल अमरोही 34 के थे, मीना कुमारी 18 की थी जब ये दोनों मिले और उसके एक साल बाद दोनों की शादी भी हो गई। बट सुनने में आता है कि कमल अमरोही वॉज क्वाइट अब्यूजिव विद मीना कुमारी, जिस वजह से 8 साल बाद इनकी शादी टूट भी गई। इंटरेस्टिंग राइट? वेल, इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और उनके तरफ से तो फिलहाल ये स्टेटमेंट आई है कि भाई ये सारी चीजें जो फिलहाल आप सुन रहे हैं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बट इमेजिन सैफ अली खान एंड तृप्ति डिमरी टुगेदर, अच्छा लगेगा यार। गोलमाल 5 में अक्षय कुमार एंट्री मार रहे हैं, वो भी एक विलेन के अवतार में, और ये विलेन नॉर्मल सा नहीं होगा। हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू हैव ह्यूमर, मैडनेस एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज द कोर। वेल, इन तीन चीजों के लिए तो अक्षय कुमार को ऐसे भी हम प्यार करते हैं यार। भाई ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे तो कमाल नहीं धमाल मचा रही है ये फिल्म। मैं बात कर रही हूँ मिर्जापुर द मूवी की, जो 200 करोड़ क्लब में पहुंच चुकी है। बाकी इस सीरीज के बिग स्क्रीन अडेप्टेशन को जिस हिसाब से ग्लोबली रिसीव किया है ऑडियंस ने, स्पीक्स वॉल्यूम। वरना तो रिसेंटली प्रियदर्शन डायरेक्टोरियल हैवान भी आई, जिसके थ्रू सैफ अली खान और अक्षय कुमार 18 सालों बाद एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आए। बट मूवी देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि यार अपनी आंखें फोड़ लूं। एनीवे, मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

फाइनली चौथे अटेम्प्ट में बन पाई थी ये फिल्म। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बाबू मोशाय 2023 में करण जौहर डायरेक्टोरियल फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। लेकिन साल 2006 में माय पंजाबी निकाह के नाम से इस फिल्म की शुरुआत की गई थी और उसको डायरेक्ट करने वाले थे सोहेल खान विद सलमान खान एंड करीना कपूर खान एज द लीड्स, बट फिर कटरीना ने करीना को रिप्लेस किया एंड आई डोंट नो व्हाई बट ये फिल्म शेल्फ कर दी गई। फिर 2015 में एक बार फिर से इसको रिवाइव किया गया, स्क्रिप्ट को थोड़ा बदला गया और फवाद खान को मेल लीड बनाया गया, बट फिर से इसको होल्ड पे डाल दिया गया यार। फिर 2018 में आयुष शर्मा, बोले तो सलमान खान के जीजू, को फिल्म का लीड बना के लाया जाने वाला था, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से इस फिल्म को वापस ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एंड फाइनली फिर करण जौहर ने सोहेल खान से इसकी स्क्रिप्ट ली, उसको ऑल्टर किया एंड रणवीर आलिया के साथ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फाइनली हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। बाकी ऐसे ही किसी फिल्म के बारे में आपको भी कोई ट्रिविया जाननी हो तो उसका नाम मुझे 9930983983 यानी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
0: बोलो।
1: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा आपको।
0: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23।
1: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का?
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
1: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
1: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर
2: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
0: कुकड़ों को
1: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live

0: भाई इस इंसान की वजह से ना अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को कोसने का मन होता है।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: हाँ ना उन्होंने फोन बनाया होता ना इस इंसान को झेलना पड़ता। सो बेसिकली फोन करने वाले दो लोगों की बात करना चाहती हूँ एट मेजर, जिसमें पहली वाली जो कैटेगरी है वो मेरे और आपके जैसे लोगों की है, जो नॉर्मल डेज में एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम ना टाइम का हिसाब रखते हैं कि हम बेवक्त किसी को कॉल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है, ओ हो हो हो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के कीड़े ने काट रखा है इनको, वो भी बेवक्त कॉल करने वाले कीड़े ने। क्योंकि इस इंसान को आपकी याद तभी आती है जब या तो इसने दो चार मार ली होती है या फिर इसके ऊपर प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ता है। एंड माइंड यू, ये पहाड़ इनके ऊपर ना रात के 2-3 बजे ही ऑड टाइम्स में ही टूटता है। और गलती से अगर आपने इनका कॉल उठा लिया तो भाई आपके 2-4 घंटे तो यूं ही स्वाहा। इसलिए आज के डेट में मैं तो ये दूसरी कैटेगरी वाले लोगों के फोन को सीधे इग्नोर करती हूँ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आफ्टर ऑल ये इंसान खाने में खाता क्या है?
1: ओटीटी एंड चिल।
0: मिर्ची बेटी उन्नु आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20 फेम, वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, काजी के बारे में यार, क्योंकि गजब ही पागलपन चल रहा है इस इंसान का भाई। एक तरफ ये कैमरा में देख देख के बोल रहा होता है कि ओ दिस इज ऑल एक्टिंग दैट आई एम डूइंग, बट भाई साहब लेजिट उसको देख के लगता है ना कि कुछ तो पेंच ढीली है इसकी। और भाई रिसेंट एपिसोड में जिस हिसाब से उसने मेरी कॉम को जेंजी टर्म समझाने की कोशिश की है, यू वोंट बिलीव ही वॉज लिटरली सेइंग कि भाई आपको पता है बेंचिंग का मतलब क्या होता है? बेंचिंग का मतलब होता है कि लड़का जो है वो बेंच पे बैठ जाता है और उसके बाद लड़की को वो नीचे बैठाता है और अपने जूते उसको दे देता है, बोलता है कि साफ कर मेरे जूते, इसको बोलते हैं बेंचिंग। कैन यू बीट दैट? वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से ही नहीं, बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि भाई बिग बॉस 20 के ये जो कंटेस्टेंट्स आए हैं इस बार, इट इज द वर्स्ट दैट वी हैव सीन अक्रॉस ऑल सीजंस। और मैं तो दाद देना चाहती हूँ उन लोगों का यार जो इस शो के 24 आवर्स टेलीकास्ट को देखते हैं। मतलब कैसे ब्रो, कैसे, हाउ आर यू कीपिंग योर सैनिटी इंटैक्ट? काजी छोड़ो, मुझे ये बताओ आप क्या खा रहे हैं? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: She is not your regular heroine.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें अलग अलग कैरेक्टराइजेशंस देखने को मिले हैं ऑफ एक्ट्रेसेस, राइट. लेकिन आज मैं उन हीरोइंस की बात करने वाली हूँ जिनके हाथ में फूल नहीं FIR होते हैं. सो बॉलीवुड में पुलिस यूनिफॉर्म ट्रेडिशनली हीरोज की टेरिटरी रही है, राइट. वो सिंघम हो, दबंग हो, सिम्बा हो, द लिस्ट इज रियली लॉन्ग. लेकिन जब हमारी फीमेल एक्टर्स ने खाकी पहनी तो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी, अपने साथ एक अलग काइंड ऑफ अथॉरिटी, अग्रेशन और वल्नरेबिलिटी भी लेकर आई. तो आज मेरे पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मिली हमें कुछ अल्टीमेट लेवल वुमेन कॉप्स. लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे शिवानी शिवाजी रॉय यानी कि रानी मुखर्जी का किरदार फ्रॉम द मूवी मर्दानी. नंबर दो पे बात करेंगे DCP वर्तिका चतुर्वेदी के बारे में प्लेड बाय शिफाली शाह इन दिल्ली क्राइम. नंबर तीन पे IG मीरा देशमुख प्लेड बाय तबू इन दृश्यम. नंबर चार पे SP आभा माथुर प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा इन जय गंगा जल. और नंबर पांच पे कस्तूरी डोगरा प्लेड बाय रवीना टंडन इन अरण्यक. तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं उस कॉप की जिसके नाम में ही एटीट्यूड है, शिवानी शिवाजी रॉय. रानी मुखर्जी आज शिवानी क्राइम ब्रांच ऑफिसर हैं जो मर्दानी में चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट के खिलाफ खड़ी होती हैं. हमारी इस हीरोइन को किसी हीरो के बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है, खुद क्रिमिनल्स को चेज करती है और जरूरत पड़े तो खुद एक्शन भी लेती है. इन शॉर्ट शिवानी शिवाजी रॉय स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ करेज, जस्टिस एंड अ वुमन्स रिफ्यूजल टू बैक डाउन. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में अपनी इस लिस्ट को वापस लेकर आऊंगी. टिल देन यू स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था। सारे बादल नीचे आ चुके। And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: The Mentalist Suhani Shah live

0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
1: अगर आपका दोस्त आपको बहुत ज्ञान दे रहा है तो इंग्लिश में उसे ये ना कहिए माइंड योर ओन बिजनेस, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए चल बे अपने बाप को मत सिखा।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची।

0: यार ये आवारा पन गाना खत्म हुआ अरिजीत सिंह की आवाज में, लेकिन यार दो दोस्त साथ में आवारा गर्दी करते दिखे मुझे। मिर्ची घड़ी में शाम के 4:04 और जो दोस्तों की बात मैं कर रहा हूँ ना वो काजी तौकीर और अरिजीत सिंह ही तो है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, बिग बॉस का ये सीजन 20 शुरू हो गया और ऐसे मैंने देखा यार पिछले दिनों सलमान खान काजी तौकीर की खूब तारीफ कर रहे थे। इस दौरान मैं काजी के सोशल मीडिया हैंडल पे चला गया एंड आई सॉ काजी तौकीर एंड अरिजीत सिंह आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। लगभग कह सकते हैं 15-16 साल तो हो ही गए होंगे, इनफैक्ट और ज्यादा। जब काजी तौकीर, इनफैक्ट यार 25 साल होने का आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2002-03 की बात होगी, जब काजी तौकीर ने अरिजीत सिंह को फिनाले में हराकर फेम गुरुकुल जीता और पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। उसी काजी तौकीर ने जिन्होंने अफगान जलेबी गाने में अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी, वही काजी तौकीर अरिजीत सिंह आज भी अच्छे दोस्त हैं। तो दोस्ती दोस्तों ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक निभे और आप कितनी ऊंचाई में पहुंच जाएं, दोस्त हमेशा आपके लिए स्पेशल होना चाहिए। वैसे आपका ये नाचीज दोस्त आ गया है, अगले 4 घंटे देश दुनिया की बातें आपके कान में हम बताते एंड इतने ही कहेंगे 89.6 मिर्ची वन पर। शाम के बज गए 4, तो अब होगी शाम आपकी शानदार। अगले 4 घंटे तक हम ही हैं, वॉल्यूम बढ़ा लो एंड मिर्ची गुल्ला खांची अभी भी।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
3: अभी किससे बात?
2: अभी किससे बात करनी है?
3: भैया नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला?
3: पागल
2: पागल
3: कौन बोल रहा?
2: पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है, इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा
3: हूँ।
2: नंबर चेक के मिला?
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा?
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास। पागल कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू को
4: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah

अगर जिंदगी में अगर सब कुछ फटाफट हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला हमारे साथ ही खड़ा होकर सब करा रहा है। अब जैसे कभी कभी एग्जाम में होता था कि मतलब मेरे हिसाब से जब क्वेश्चन पेपर आता था मैं फटाफट पूरे करता था, ऐसा लगता था यार ऊपर वाले ने देख लिया कि मैं तीन ही चैप्टर पढ़ के और तीनों ही चैप्टर से भर भर के सवाल आए। लेकिन जिंदगी में हर चीज इतनी अच्छी नहीं होती। पर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब एक सर्विस आपके लिए एकदम सुपर फास्ट की तरह हो जाएगी। याद रखिए हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हो गया है फास्ट पास। ये फेशियल रिकॉग्निशन है जो कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सर्विस शुरू की गई है एंड ये कतर एयरवेज पैसेंजर्स के लिए फिलहाल है, जहां पर आप एयरपोर्ट के टच पॉइंट्स पर अपने कम डॉक्यूमेंट चेक्स के साथ तेजी से अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ जाएंगे। यस, कतर एयरवेज ने ये ऑप्शनल सर्विस को शुरू किया है जहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद रजिस्टर्ड होते ही आपके फेशियल इमेज से आपके सारे गेट्स खुलते जाएंगे एंड फास्ट पास आपको बहुत काम आएगा। एंड इसको रजिस्टर करने के लिए आपको कतर एयरवेज ऐप पे जाना है या फिर जब आप हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल में पहुंचोगे तो वहां पर भी जो कियोस्क है उससे हो जाएगा। लेकिन फास्ट पास के लिए याद रखिए आपको फेशियल रिकॉग्निशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी होगी एंड उसके बाद बस आपकी इमेज से ही आपके एयरपोर्ट टच पॉइंट पर आपके बार बार ट्रेवल डॉक्यूमेंट चेक नहीं होंगे, आप एक बार में सीधे फास्ट पास यूज कर अपने बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ जाओगे। हालांकि ये सर्विस अभी सिर्फ कतर एयरवेज पैसेंजर्स के लिए है एंड दे शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड वैलिड पासपोर्ट के साथ उनकी ट्रिप को दोहा से ही स्टार्ट कर रहे हैं वो इस फास्ट पास को यूज कर पाएंगे। बट आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये प्रोसेस जो है बाकी एयरलाइंस पे भी यूज हो जाएगा। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, अभी तो वैसे ही आप एयरपोर्ट पे इतनी आसानी से आगे बढ़ रहे थे, अब इस फास्ट पास के जरिए आई थिंक इट विल टेक लेस देन 30-40 सेकंड्स। हाँ जी, तो चलो तैयार हो जाओ। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ना ये तो ठान लिया है कि आप एयरपोर्ट पे जब एक बार आ गए तो आपको बिना दिक्कत के फटाफट से चेक इन करा दिया जाए और उसके बाद आप एयरपोर्ट के कोने कोने चप्पे चप्पे पे घूमो, शॉपिंग करो, सुख मतार का हिस्सा बनो या फिर आप आराम से हमारे खूबसूरत पीछे जो ऑर्चर्ड है उसमें जाके एंजॉय करो। ये सब कुछ यही होता है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अगली बार दोस्तों को बता दो 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

89.6 89.6 Mircii.

0: तुमको ऊपर की तरफ है बढ़ना। अरे हम गोल्ड रेट की बात कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप साल भर भी करते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार सब ऊपर की तरफ तो जा रहा है, फायदा ही फायदा हो रहा है बाबू भैया।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अल फरदान एक्सचेंज पैम्प गोल्ड रेट्स में आपको बता दूं, इस वक्त पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार मिलेगा 576 कतारी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2699 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम 5329 कतारी रियाल, पैम्प 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16470 एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज 61151 कतारी रियाल। वेल, पैम्प के ऑफिशियल डीलर हमारे कतार के अल फरदान एक्सचेंज, जहां पर आपको ये सारे के सारे अलग अलग मिल जाएंगे, यानी कि 1 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, एंड ट्रस्ट मी आप ये लेते हो एंड अपने पास रखते हो तो आपको ये याद रखना है कि आप स्विट्जरलैंड का सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड लेकर बैठे हो। 89.6 मेरे जीवन पर मस्मोला गौरव आपके साथ, मेरे जीवन इट्स हॉट।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: रेडी?
6: रेडी।
5: टू लर्न?
6: यस।
5: टू प्ले?
6: एब्सोल्युटली।
5: टू ग्रो?
6: विद मेजराती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलिशियस एंड न्यूट्रिशियस मेजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स।
6: मिल्क, चीज, योगर्ट, लैवेंडर, एग्स।
7: From breakfast to lunch box and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: Tanishq lekar aaye hain Garden of Gems, jahan color is the story behind every stone, made to be worn often. Pehniye chahe classic dinner occasion ke liye, family functions ke liye, ya a regular office day. Available across Tanishq stores in Qatar or online at tanishq.ae. Visit a Tanishq store near you and see the color in person. TNC supply.
0: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
9: आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कुछ नहीं आया, तो इंग्लिश में आप ये ना कहिए थैंक गॉड इट्स नॉर्मल, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए यार पैसे बर्बाद हो गए।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
8: Mirchi, it's hot.

0: अरे सब हो जाए लेकिन अच्छा मौसम मेरा कब होगा।
1: मस्त मौला गौरव
0: 89.6 मिर्ची 1 पर। एक बात तो बिल्कुल झूठ नहीं कहेंगे सूरज चाचू, आजकल शाम को थोड़ा ठीक तो लग रहा है लेकिन ह्यूमिडिटी मत कराया करो।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
0: अब देखिए अगर आज की बात करें, दिन का मैक्सिमम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर था एंड मिनिमम बहुत सालों के बाद, कह सकते महीनों के बाद 29 पर आया है। बड़ी बात यह है कि अगर ये 20s में जाता है तो वेदर बेहतर हो जाता है एंड अर्ली मॉर्निंग उठकर नहाइए तो आपको पानी में भी फर्क नजर आता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से मौसम ने अपनी चाल बदलनी शुरू कर दी और अगर ये मैक्सिमम टेम्परेचर 30s में रह जाए और मिनिमम 20s में आएगा तो धीरे धीरे मौसम और बेहतर होता जाएगा। हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, लेकिन असली इस आग में घी झोंकने का काम ह्यूमिडिटी करती है। वैसे तो गर्मी उतनी नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी जब आती है तो गर्मी अपने आप हमारे पसीने छुड़ा देती है। तो थोड़े दिन जो चश्मे पहनते हैं उनके लिए मेहनत के टाइम चल रहे हैं, आप लगातार अपने चश्मे पोछा करो एसी से बाहर आते ही। लेकिन कोई नहीं, बस कुछ दिनों की और बात, फिर मौसम एकदम चकाचक, बाहर की बीच आउटिंग पार्टी सब होगी। मिर्ची इट्स हॉट। फिलहाल दिलजीत दोसांझ की आवाज में एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है गुम है, FIR कराएं।
4: एक

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: I like that song.

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं. देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मिर्ची के साथ बनो इंडिपेंडेंट।
1: आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कुछ नहीं आया, तो इंग्लिश में आप ये ना कहिए थैंक गॉड इट्स नॉर्मल, बल्कि इंडिपेंडेंट बनिए और कहिए यार पैसे बर्बाद हो गए।
0: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची

0: सल्तनत। लाल कलरची बांगडी, संजू राठोड की आवाज। रेडी 9.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आपके साथ जनाब। 5:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: एंड जब मैं आपके साथ हूँ तो फिगर नॉट दोस्तों, क्योंकि जब बारी आती है शाम के 5:05 तो हम खेलते हैं पहचान कौन। में आज जो आवाज मैं सुनाने जा रहा हूँ वो एक जबरदस्त एक्टर की है, बताइए कौन है ये।
2: ओए हट जा पीछे, हट जा पीछे, पीछे पीछे पीछे पीछे पीछे हट जा। जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो वीडियो के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा अपनी मेरे से, 2000 लोग फोटोग्राफ लेंगे।
0: क्या बात है, एंड ये एक्टर को हम सबने बहुत प्यार दिया है क्योंकि ये फिल्मों के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं।
2: ओए हट जा पीछे, हट जा पीछे, पीछे पीछे हट जा, पीछे पीछे हट जा। तो जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो वीडियो के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा अपनी मेरे से, 2000 लोग फोटोग्राफ लेंगे।
0: वेल 2-4 लोग फोटोग्राफ लेंगे, कोई नहीं पूछेगा, बस माहौल बनता है। एंड यही सवाल मैंने पूछा है, बताइए ये किस एक्टर की आवाज है जो आप यहाँ सुन रहे हैं।
2: ओए हट जा पीछे, हट जा पीछे, पीछे पीछे हट जा, पीछे पीछे हट जा। तो जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन आया पीछे यार, क्या आया पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो वीडियो के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा अपनी मेरे से, 2000 लोग फोटोग्राफ लेंगे।
0: बस बस बस यही तो मस्त बोलो गौरव ने सवाल किया है, जवाब भेजो 5000 1896 पर कि अमा गौरव ये जो आवाज सुना रहे हो तो फला हीरो की है। मैंने हिंट में इतना ही कहा है, ये फिल्मों से ज्यादा सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। 5000 1896 पर मस्त बोलो गौरव इंतजार कर रहा है। फिलहाल कविता शेठ एंड नीरज श्रीधर एक साथ मिलकर इंतजार नहीं करेंगे, बंधु गाना गाएंगे और सुनाएंगे आपको बंधु। आई टिकेट मिर्ची 89.6 हॉट अच्छे।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल, कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती हैं.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं, हाँ,
1: आप किस से बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें कर
2: नहीं,
1: रहे हैं.
2: नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: वो तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं नहीं, बात नहीं,
1: तमीज
2: सीखिए. नहीं,
1: तमीज नहीं, नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
1: Okay.
2: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट STT's Nunu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: वंजन शिल्पराव एंड सचिन जिगर सबने मिलकर कहा है मेरी बात में आपका ही हूँ, आपका ही होकर रहूंगा मैं। एक 500 कतरी रियाल उधार मिल जाएगा क्या आपसे? वापस कर देंगे अगले साल, उसके बाद वाले साल, मतलब जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कर देते हैं, लेकिन फिलहाल आपको कमिट करना था कि ये किसकी आवाज है। पहचान कौन में एक आवाज आपके कानों में गूंजती है, आपको कहना होता अमा गौरव ये तो फला एक्टर है, और आज की आवाज थी
1: जो आदमी खड़ा है वो भी देखते कौन है पीछे यार, क्या है पीछे, तो उनको अटेंशन मिलता है। आप उसी एक्टर को अकेले भेज दो वीडियो के अंदर, कोई नहीं पूछेगा, चुपचाप निकल जाएगा अपनी मेरे से 2000 लोग फोटोग्राफ लेंगे।
0: और ये सच्ची बात बोलने वाला कौन एक्टर है?
2: हाय गौरव,
0: हाय,
2: दिस इज अभिलाष।
0: जी अभिलाष,
2: द वॉइस नॉट दैट यू प्लेड इज ऑफ सोनू सूद।
3: हाय गौरव जी, इट्स मी सोनू खान द रॉक स्टार। एक्चुअली किस एक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं? ये है सोनू सूद।
4: हाँ जी गौरव जी।
0: हाँ जी वीरे,
4: की हाल चाल जी तुहाडा?
0: बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया।
4: सॉरी
0: भाजी,
4: मैं ड्राइव कर रहा
0: है। सोनू सूद, ओके जी, थैंक यू
5: भाई। ये सोनू सूद की आवाज थी।
6: सोनू सूद,
0: ओके,
7: गुड आफ्टरनून। ये आवाज है ने सोनू सूद की।
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं अपने सोनू सूद की। यार लड़के ने इतना काम किया है कि लोग उसे अपना मानते ही।
8: और भाई कैसे हो? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है भाई। मैं कतर में काम करता हूँ, हाई ड्राइवर। भाई ये तो आवाज सबको पता है, अपना एक बिंदा सोनू सूद भाई की।
0: क्या आवाज है भाई,
8: और बताओ कैसे हो भाई? मेरी आवाज जो है इस पे रेडियो पे जरूर सुनाना। ओके भाई,
0: अरे बज रही है आपके पास, सब लोग सुन रहे हैं आपको।
8: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, सुना देना।
0: हाँ जी,
9: रफी अहमद बोल रहे हैं।
0: हाँ रफी भाई, हाँ लखनऊ से।
9: एक्टर का नाम है सोनू सूद।
0: चलो भाई, हमारे रफी भाई लखनऊ से, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए और बाकी सबके लिए हो जाए। यस, क्योंकि ये आवाज सोनू सूद की है जो आज आपने पहचान कौन में सुनी थी। इतना ही कहना चाहता हूँ, एक शानदार कलाकार अभिनेता होने के साथ साथ जिस तरह का सोशल वर्क करते हैं और कोविड में लोगों की मदद की थी, मैं दिल से सोनू सूद का बहुत बड़ा फैन हूँ। उम्मीद है कि हमारे बॉलीवुड का ये सुपरमैन एक दिन पूरी दुनिया पर अपनी छाप यूं ही छोड़ेगा, जब एक्टिंग के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों की मदद करने आगे बढ़ेगा। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alphadon Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alphadon Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: Mirchi ke saath bano Hindi Pendant.
8: आपके दोस्त ने नया टैटू बनवाया तो इंग्लिश में तारीफ करते हुए ये ना कहिए नाइस टैटू, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए लो गई सरकारी नौकरी।
7: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

खाई हमारे गुलजार साहब ने। लेकिन दिमाग फुर्स से उड़ जाएगा जब आप दिमाग में क्या सोच रहे हैं ये सुहानी को पता चल जाएगा। एंड सुहानी उस क्राउड के बीच में अगर आपको ये बता दे कि आप अपने दिमाग में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप 3-4 दिन पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, जहां पर आपके फैमिली में आपने जो जो बताया वही सच वो सामने ला सके। वैसे फिलहाल दी मेंट इज सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। Is all said, this is brought to you by Qatar Calendar, presented by iPay, and हम बिल्कुल तैयार हैं उस शाम के लिए जो 25 सितंबर को QNCC में होने जा रही है। दोस्तों आपको अपनी टिकट बुक कर लेनी है क्योंकि एस सिटी स्लोनू पर 30 कतरी रियाल का कैशबैक विद अर्ली बर्ड प्राइजेस, एंड इसके अलावा प्लेटिनम लिस्ट एंड क्यू टिकट सब जगह हमारी ये टिकट्स मिल रही हैं। लकालक लोग फर रहे हैं, अपनी सीट्स फील कर रहे हैं। आप काफी पीछे ना बैठे इस बात का भी ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके अपनी सीट्स बुक कर लो। बट बड़ी बात यह है कि सुहानी जो है ना वो जब ये पूरा शो कर रहे होंगे ना वो किसी को भी कभी भी उठा देंगी, चाहे वो कितना भी पीछे हो, कहेंगे हाँ हेलो यू सेकंड लास्ट रो वाले थर्ड वाले भैया हाँ जी आप इधर देखो, एंड बस उसके बाद भैया आपकी सारी पोल खोल देगी। 5000196 पर यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू। लेकिन याद रखिए आपको अपनी टिकट्स बुक करनी है ताकि सुहानी की शाम में आप शामिल हो जाएं। और सिर्फ सुहानी नहीं, इस स्टेज पर गीत संगीत की महफिल भी होगी जहां पर डांसर आसी एंड साथ में सिंगर चरण भी होंगे, एंड बहुत सारा फन मस्ती धमाल अवेट कर रहा है। तो अपनी टिकट्स बुक करो, एंड फिलहाल मस्त मोल गौरव के साथ टाइकी श्रेया घोषाल के इस जबरदस्त कोलैबोरेशन को सुनो, मिर्ची इट्स हॉट।

मेरे नाम की जिंदगी मत करो, अपना वॉलेट मेरे नाम कर दो भाई। मस्त मौला गौरव। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, ये विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह, इनके पास इतने पैसे हैं, कुछ उधार देते होंगे दोस्तों से तो वापस लेते होंगे। मेरे वाले तो लेते हैं यार, फिलहाल पैसे हैं तो घर भेजो। आईपीपी राइट नाउ जो रेट्स चल रहे हैं वो कुछ यूं हैं। एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26 रुपए 19 पैसे, एक कतरे रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.17, वहीं अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.13 पाकिस्तान रुपीज, तपाई को नेपाल रुपीज का रेट से जाजो 41.83 का बालचर रेटर बहनिया जी 41.83 को रेट चौ घर भेजन लाइक साइड टाइम चौ। अगर बंधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा, एक्टा कतरे रियाल के बदले 33.83 तो 33.83 एक्टर रेट आज बांग्लादेशी टाका चिलूम। मस्त मौला गौरव के साथ सुनते रहो मिर्ची मिर्ची हॉट है।

0: the show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: देखिए मम्मी पापा हमेशा बचपन से समझाते हैं पढ़ाई लिखाई हमेशा काम आती है। और अगर आपने फाइनेंस बैकग्राउंड से पढ़ाई करी है आपको और टेक्निकल नॉलेज है तो आपके लिए एक मौका है 6:07 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी जरा ध्यान से सुनिए, अकाउंटिंग फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम या कंप्यूटर साइंस में अगर बैचलर्स डिग्री है तो कतर में आपके लिए जॉब का मौका है।
2: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: हाँ जी फ्रेश ग्रेजुएट है जॉब हंट कर रहे हैं कतर में, आपको लग रहा है कुछ ऐसा मिल जाए यार जिससे हमारा रोजी रोटी चले, तो दोस्तों सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने जनरल टैक्स अथॉरिटी के साथ मिलकर कवादर प्लेटफॉर्म पर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अनाउंस कर दी है। कवादर KAWADER, मैंने बताया था पिछले दिनों की यहाँ पर जॉब जो भी आती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर आपको दिखती है। अगर आपके पास अकाउंटिंग फाइनेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स डिग्री है, आप मेल है या फीमेल है, फ्रेश है या एक्सपीरियंस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैकेंसीज आप सबके लिए ओपन है, तो बस देर किस बात के, सीधे कवादर प्लेटफॉर्म पर जाइए दोस्तों, अपना सीवी अपलोड कर दीजिए, पूरी डिटेल्स चेक करो और तुरंत अप्लाई करो क्योंकि इससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। एक मौका आया है इसे यूं ही न जाने दें एंड मुझे पूरी उम्मीद है एक बार कतर में जब आपकी ऐसे जॉब लग जाती है तो ये मुल्क आपको ऐसा अपनाता है कि आप फिर यहीं के होकर रह जाते हो। 30-30, 40-40, 50-50 साल लोगों ने नौकरी की और आज भी कतर में है, ये बताता है कि यहाँ पर लाइफ का एक सुकून तो है जो आपको अच्छी जॉब के बाद मिलने लगता है। 89.6 मेरे जीवन पर, ये अच्छी सी बात मसमाला गौर ने बताई। अगर जॉब लगी मेरे भाई या बहन तो मिठाई हमारी बनती है। हाँ जी बकलावा भी चलेगा या फिर खजूरी खिला दो, हम तो हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं, बड़े एडजस्टिंग है यार, मिर्ची इट्स हॉट। फिलहाल आदित्य त्रिकारी की आवाज में हर गाना बड़ा एडजस्ट सा हो जाता है, प्यारे से तरीके से गाते हैं, ज्यादा चिल्लाना भी नहीं पड़ता इनको, धीरे धीरे सब कर लेते हैं।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Is that Mr. Vipul?
3: Yes.
4: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
3: ओके।
4: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: हैंड मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराएं ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: एक मुल्क की तरक्की यूं तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, लेकिन जब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो तो ये तरक्की और बढ़ती है। एंड टेक एआई लवर्स, कतर ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया है जिसका जिक्र यहाँ होना बहुत जरूरी है।
1: #974
0: कंप्यूट इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसमें कतर ने टॉप स्पॉट हासिल कर लिया है। Yes, कतर इसमें रैंक 1 पर आया है। ग्लोबल लेवल पर एसेस किया जाता है, दुनिया के कुछ शहरों को लिया जाता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उनका लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो होस्ट कर पाते हैं कि नहीं कुछ बड़े चीजों को। इस मामले में कतर को टीयर 1 यानी कि एडवांटेज वाला स्टेटस मिल गया। एंड बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटलुक है। अगर बड़े पैमाने पर सोचा जाए तो दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले टाइम में कतर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि कतर ने यूएस के लोवा, इंडियाना, टेक्सस और यूएई जैसे मेजर टेक हब्स को पीछे छोड़ दिया है और खुद अब इस पोजिशन पर आ गया है कि पूरी दुनिया ये समझ जाएगी कि कतर में भैया कटिंग एज डिजिटल वाला जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और कतर जिस तरह से फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेशली एआई वर्ल्ड में, ये बता रहा है कि हमने अब ठान लिया है कि आगे बढ़ना है और हर फील्ड में बढ़ना है, टूरिज्म से लेकर अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक। कतर ने पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया है टेक्नोलॉजी का नया हब हम बन सकते हैं। मिडिल ईस्ट और गल्फ में अपनी एक दमदार मौजूदगी यह बताती है कि आने वाले टाइम में और जॉब क्रिएशन होंगे और एआई एंड टेक फील्ड के बड़े बड़े नाम भी यहां आएंगे। मिर्ची, इट्स हॉट।

गौरव आपके साथ है और कल ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर भावेश मोदी मेरे साथ थे। उनकी एक बात ने ना हम सबको एक राह दिखाई है। यूं तो हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने आप को एडवांस रखने के लिए हर वक्त फोन को अपने पास रखते हैं और उससे ज्यादा मुझे हेडफोन वाले लोग नजर आने लगे। यस, ईयरफोन लगाकर घूमते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात अब सामने आ रही है कि अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं, आपने रात में भी अपना वो एयरपॉड लगा कर रखा है, तो ये हियरिंग लॉस का रिस्क बढ़ा रहा है। आपको रात में पहले तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आप लगा के सोते हैं, सोच के कि चलो भैया इसी बहाने सोते सोते सो जाएंगे, तो ये और बड़ी मुसीबत कर सकता है। रिमेंबर उनका 60-60-60 का वो अच्छा वाला फंडा जो उन्होंने बताया, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम 60% पे रखते हैं, आप लगातार 60 मिनट्स तक अपना हैंड फ्री लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 60 मिनट का ब्रेक भी लेना है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में ना आपका असली वाला कान ही आपका कान है। ये डिजिटल दुनिया में आप उस कान को लगाकर अपना कान मत समझिए जो हैंड फ्री के रूप में आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी इसलिए आई है ताकि आपको सुविधा दी जा सके, लेकिन जब आप इस सुविधा का यानी कि इस कंफर्ट लेवल का ज्यादा यूज करेंगे ना, तो आपके लिए असुविधा के लिए खेद हो जाएगा। इसलिए प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजें पर शायद हमारी लाइफ में आने वाली कई बड़ी मुसीबतों से हमें बचा सकती है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: अरे साइकिल इससे ज्यादा चौड़ी होती है, ये तो 19 इंची की कार में घूम रहे हैं। मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। मैं कहूँ कि साइकिल के हैंडल से लगभग बराबर बराबर एक कार है तो कैसा लगेगा। इटली के एक एंड्रिया मराजी साहब है, इन्होंने वो काम कर दिखाया है जो इससे पहले कोई नहीं कर सकता और इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया दुनिया की सबसे छोटी कार लेकर।
1: क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो?
0: अरे एक तो इनका काम है कार को डिसमेंटल करना और रिसाइकिल करना है बहुत सारे व्हीकल्स को। ऐसे में इन्होंने एक फिएट पांडा को रिबिल्ड किया एंड उसकी वाइड यानी कि विड्थ जो है 19.76 इंचेस रख दी। वेल ये कार चलाई जा सकती है और बड़ी बात यह है कि मराजी साहब बकायदा इसमें बैठ के बहुत सारी जगहों पे जाते हैं एंड इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और लोग इनकी कार को देखकर इन्हें स्माइल्स देते हैं जिसकी वजह से इनको अच्छा लगता है। एंड अब इनकी ये टेक्निकल अचीवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गई है विद द नैरोएस्ट ड्राइवेबल कार यानी कि सबसे चौड़ी कम चौड़ी कार जिसको आप ड्राइव कर सकते हैं मात्र 20 इंची। भाई साहब मैं इतना ही कहना चाहूंगा ये कार आने वाले टाइम में फ्यूचर कार बनेगी। जिस हिसाब से पार्किंग का इश्यू हो रहा है इनकी ये वाली कार अच्छी है, अगर पार्किंग मिली तो ठीक, नहीं तो उठा के दुनिया के किसी और कोने में चल देंगे अपने हाथों में। 89.6 मिर्ची वन।

0: Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
3: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
2: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
5: विद तनिष्क्स बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट तनिष्क, लूडू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। टीएनसी सप्लाई।
6: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
7: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे, कैसे करूँ? प्लीज हेल्प करो ना।
6: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर अस्ताना के पास जाना।
8: साले का खोपड़ी तोड़, साले का।

0: हीरो वाली फीलिंग, हीरोइन वाली फीलिंग तो अब आप लेंगे। 89.6 मिर्ची वन पर मैं आपके साथ हूँ और फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 7:03 के आसपास का।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे अभी जितनी फास्ट प्रोसेस है हम उसी से संतुष्ट है, लेकिन तो लग रहा है आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही जाएगा हमारा हमद।
2: #974974 the most trending local news of the day।
0: अगर आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले रहे हैं तो आपकी ट्रेवल लाइफ और आसान होने जा रही है। इतनी स्मूथ, इतनी हैसल फ्री, इतनी फास्ट कि आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि फास्ट पास सर्विस को अब शुरू किया जा रहा है। यस, एयरपोर्ट जैसे ही आप पहुंचेंगे कैमरा की तरफ देखते ही आपकी वहां एक प्यारी सी फोटो खींचेगी, फिर आपका फेशियल रिकॉग्निशन आपको बोर्डिंग और टच पॉइंट्स पर बिना बार बार डॉक्यूमेंट दिखाए आगे निकालता जाएगा। इसके बाद आपको हीरो जैसी फीलिंग ही तो आएगी। वैसे फास्ट पास सर्विस फिलहाल के लिए सिर्फ कतर एयरवेज के साथ है, एंड फास्ट पास की सबसे खास बात यह है कि एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है जो अलाउ करता है आपको फेशियल इमेज के साथ एयरपोर्ट के टच पॉइंट्स पर बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। हालांकि अभी सिर्फ ये कतर एयरवेज पैसेंजर्स के लिए, और बड़ी बात यह है कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वालों के ही लिए, बट आने वाले टाइम में यू नेवर नो ये सबके लिए हो जाए, तो बस तैयार हो जाइए। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको जरूर करना पड़ेगा, कतर एयरवेज ऐप पर जाकर, या फिर जैसे ही आप हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नियर रो 3 के पहुंचते हैं तो वहां पर एक सेल्फ सर्विस कियोस्क, याद रखिएगा रो नंबर 3 के पास सेल्फ सर्विस कियोस्क पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड चीजें और फास्ट हो जाएंगी। वेल, इसका कुल मिलाकर फायदा यही होगा कि जैसे ही आप हमारे एयरपोर्ट पे चेक इन कर लोगे, सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जाओगे, आपके पास एम्पल टाइम होगा। आप घूमिए हमारे ऑर्चर्ड की तरफ, आप जाइए सूख मतार की तरफ, आप एयरपोर्ट पे घूमते रहेंगे, एंड फाइनली जब आपकी फ्लाइट की बारी आएगी तो उड़कर कतर को याद करेंगे कि यार बड़ी फास्ट सर्विस वाला एयरपोर्ट था, हमारा कतर है ऐसा। मिर्ची इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: डेस्परेडो तो नहीं, लेकिन अगर डेस्परेट हो जॉब के लिए तो एक अच्छी खबर। यस सिस्टर एंड माय ब्रदर, कतर में आपके लिए अब है जॉब ऑफर।
1: #974 The most trending local news of the day.
0: Yes, हम आपको बता दें, सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने जनरल टैक्स अथॉरिटी के साथ मिलकर कतर में कवादर प्लेटफॉर्म पर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अनाउंस कर दी हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि बस ग्रेजुएशन किया और सोच रहे हो यार कोई जॉब लग जाए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री है, तो बस आप मेल हैं या फीमेल, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस, ये वैकेंसीज में आप सबके लिए मौका है। कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बस थैंक यू कह दीजिएगा और थोड़ा स्वीट्स खिला दीजिएगा, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ यार इस कतर में सबकी जॉब लगे और लोग जॉब लगने के बाद यहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आगे अफोर्ड कर पाए। मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाएंगे और वो कवादर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने लिए इन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज में एक हिस्सा खोजेंगे। मस्त मौला गौरव आगे बढ़ता है। 89.6 मिर्ची वन पर इतना ही कहता हूँ, कतर में एक बार जॉब लगी ना तो फिर रिटायर हो के ही जाओगे, इतना सुकून है यहाँ। मिर्ची इट्स हॉट।

अरे अब तो दुनिया मान रही है कि हमारा कतर टेक्नोलॉजी एंड एआई का दुनिया का एक नया हब बन रहा है। यस, टेक्नोलॉजी एंड एआई लवर्स के लिए कतर में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जा सकता है। कंप्यूट इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कतर ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। हाँ जी, इसमें हमारी रैंकिंग 1 आई है, 77.4 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिला है। और ये बता रहा है कि जब लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आए, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करने का मामला है, तो कतर टीयर 1 यानी कि एडवांटेज वाले स्टेज पर है। एंड हमने यूएस के लोवा, इंडियाना, टेक्सस और यूएई जैसे मेजर टेक हब्स को पीछे छोड़कर ये पोजीशन हासिल करी है। अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो यही कहूंगा, नंबर वन रैंक का मतलब कतर में ना जितनी भी फास्ट एंड स्मार्ट डेली सर्विसेज हैं उसकी वजह से हम ये रैंकिंग में आ पाए। कतर का एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क जितना स्ट्रांग है उससे ज्यादा फास्ट हमारे डेली लाइफ के एप्स, गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि मेत्राश, बैंकिंग सिस्टम यहां का एकदम फास्ट है, स्मार्ट सिटी सिस्टम काम कर रहा है, बफर टाइम 0 है, आपकी स्पीड इंटरनेट की डबल, ट्रैफिक एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड हो रहा है, एंड बहुत सारी जॉब्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, एंड डिजिटल सिक्योरिटी भी जबरदस्त। एंड इसका मतलब ये कि हम एक सिक्योर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में रह रहे हैं जहां पर हमारा पर्सनल डेटा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब बिल्कुल सेफ है। तो सिंपल वर्ड्स में कतर हमारा तेजी से तरक्की कर रहा है। थैंक यू कहना चाहूंगा कतर की इस हुकूमत को जो हर वक्त हमारे लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर आती है। 89.6 मिर्च, इट्स हॉट।

अरे शहर की लड़की तो आपसे बस हाय उडू उडू पूछ रही है, ये लड़की दिमाग को हिला देगी, ये पूछती नहीं है बताती क्या चल रहा है। बात कर रहा हूँ उस कन्या की जिसका नाम है सुहानी शाह, दी मेंटली सुहानी शाह कमिंग फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम इन कतर। यस, ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। और इतना ही कहना चाहूंगा, एक शानदार शाम जो आपका इंतजार करिए वो है 25 सितंबर को QNCC में, जब मेंटली सुहानी शाह हम सबके बीच होंगी, अपने इल्यूजन से ऐसा जादू क्रिएट करेंगे कि आप कहेंगे यार ये हकीकत की दुनिया है, ये लड़की सच में ऐसा कर रही है, बस टैलेंट है, उस टैलेंट को देखने आइए। एंड टिकट्स बुक कीजिए, यस क्यू टिकट्स पर, प्लैटिनम लिस्ट पर, या फिर आप SCTC नूनू पर भी कर सकते हैं जहां 30 कतरी रियाल का कैशबैक मिल रहा है। कुल मिलाकर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास कुछ नया देखने के लिए, ये मौके को मत जाने दो दोस्त, क्योंकि आपने कॉन्सर्ट बहुत देखे होंगे, डांस प्रोग्राम से लेकर सिंगिंग के प्रोग्राम्स देखे होंगे, गजल नाइट देखी होगी, लेकिन कतर में पहली बार दी मेंटली सुहानी शाह का शो देखिए। एंड उसके लिए टिकट्स बुक कर लो, क्योंकि ना ये शाम यादगार होने वाली है आई एम श्योर, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट बनाए रखिए, क्योंकि ये शाम सुहानी के साथ साथ डांस एंड सिंगिंग डुओ चरण एंड आसी भी होंगे, ये सब भी यहां परफॉर्म कर रहे होंगे, तो एक जबरदस्त पैकेज लेकर आ गया मिर्ची, बस अब आप अपनी टिकट्स बुक करो, सीट पर बैठ जाओ एंड इस जबरदस्त एक्सपीरियंस को फील करने के लिए तैयार हो जाओ। 25 सितंबर QNCC में जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स बुक करते रहो। मस्त मौला गौरव ने याद दिला दिया, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को अपना रहे, फटाफट से टिकट बुक कर रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ आ रहे हैं। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से, तब तक के लिए हबीबी मां सलामा, मिर्ची इट्स हॉट, हरारा खतीर।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो स्टार्ट्स इन
6: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है, बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन। एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे। कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था। शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है। यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है। और आज के मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है। कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं, और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है। इट्स मी सुरेन, दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी आर स्टार्टिंग विद द गाना व्हिच इज ऑन नंबर 20, धुरंधर का आरी आरी।
7: नंबर 20।

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊं कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूं। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, स्टंट मैन है मैं, यार करूंगा। आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ Change myself. I have to take a risk.
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नायर ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी कौन
3: हेलो किससे
2: बात करनी है
3: भैया किससे बात करनी है
2: किससे बात करनी है
3: भैया नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला
3: पागल
2: पागल पता नहीं कौन बोल रहा था
4: इको आ रहा है इको
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ
3: भैया नंबर चेक
2: नंबर चेक के मिला
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया क्यों परेशान
2: कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार
3: पता नहीं कौन
2: है पे फोन करे जा रहा है फोन करे जा रहा है
3: भैया
2: अबे पागल हो गया क्या यार
3: महंगा
2: पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास पागल कहीं का
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका बुरा मत मानिएगा प्लीज
3: रवि
4: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी
3: कुकड़ू
4: को भाई कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई
4: आप खत्म कर दो यार
1: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 15

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लव वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गेव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणबीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणबीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणबीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं, अपनी रगों से जिया था। उस फिल्म के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड ए आर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे। Pick of the week.

0: Surin ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 2.

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूं, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज़ में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। स्टिल रेनिंग एट नंबर 1, दिस इज तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना। नंबर 1।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। So until the next time I meet you here on the Mirchi Top 20, this is Sareem, over and out.
1: Sareem ke saath, only on Mirchi, it's hot. Mirchi ke saath bano, independent.
2: आपने अपना हेल्थ चेकअप कराया और उसमें कुछ नहीं आया तो इंग्लिश में आप ये ना कहिए थैंक गॉड इट्स नॉर्मल, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए यार पैसे बर्बाद हो गए।
1: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची, इट्स हॉट।

रूना लैला की आवाज़ है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। अच्छा, ये जो गाना अभी आपने सुना ना, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म घरौंदा। ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1977 और ये साल एक सुपर डुपर हिट साल था। अगर हम फिल्म्स की बात करें, ये वो साल था जब मल्टी स्टारर फिल्म्स रिलीज हो रही थी बॉक्स ऑफिस पे, बिग बैनर्स की रिलीज हो रही थी, फिर चाहे अमर अकबर एंथनी हो, परवरिश हो, हम किसी से कम नहीं हो। और ऐसे में अ वेरी लो बजट फिल्म विद अमोल पालेकर एंड यू नो जरीना वहाब, ये फिल्म ने भी अपनी जगह बना ली। इसी फिल्म का गाना आपके लिए लेकर के आई थी मैं। अब अगला कौन सा गाना है ये मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी। सुन करके वापस आओ, कहानी और किस्से उस जमाने के अभी तो शुरू हैं, आगे आगे सुनो होता है क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ? गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपको। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी।
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे।
2: सही बात कह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं हाँ,
1: आप किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
1: हेलो,
2: हाँ बोलिए।
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
1: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। नकली तरह से आप मेरे से बातें कर रहे हैं।
2: नहीं, नकली तरीके से क्या?
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
1: तो कोई बपौती है क्या?
2: नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीखिए।
1: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए।
2: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
3: This show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo-Noo. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Zehreela Insaan movie se ye gana, which is picturized on Rishi Kapoor. It is sung by Kishore Da. Sunane wali kaun hai aapko purani jeans pe? Correct, aapki pyari Shreya. अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें. ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए. लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था. सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, वो उस फिल्म का है जिसने रातों रात डेब्यू एक्टर्स को स्टार बना दिया था। एक थे कुमार गौरव और दूसरी थी विजेता पंडित। वेल, अगर आप रेट्रो फैन हैं तो आपको समझ में ही आ गया होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव स्टोरी। लेकिन इस फिल्म ने एक्चुअली में दो दोस्तों के बीच में हमेशा के लिए दरार डाल दी, मनोज कुमार और राजेंद्र कुमार। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सो राजेंद्र कुमार चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर जब ये फिल्म लव स्टोरी बना रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसे में ही वांटेड कि मनोज कुमार शुड डायरेक्ट द फिल्म। मनोज कुमार ने मना कर दिया। मनोज कुमार ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर चुके थे और उसके तहत अपनी फिल्म क्रांति, पहली फिल्म क्रांति बना रहे थे। सो ही पोलाइटली रिफ्यूज। लेकिन ये बात राजेंद्र कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेंद्र कुमार थॉट कि उन्होंने मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिखलाई थी, दैट वाज हरियाली, तो शायद दोस्त जो है वो इस बार फेवर रिटर्न करेगा, बट दैट डिड नॉट हैपन। एनीवे, इस फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत है। कमिंग अप, आशुताई का ये गाना फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है, बट रियली टेल अस हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू मेड दिस सॉन्ग?
4: व्हाट आई वाज 25 और समथिंग। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वाटरफॉल से पानी गिर रहा था, सारे बादल नीचे आ चुके एंड उस बीच में आई सॉ द लिटिल ट्रेन कमिंग आउट। देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग।
3: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैकशिप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिम्पल कपाड़िया इस फिल्म के लिए अपना साइनिंग अमाउंट बिल्कुल वापस नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर टीनू आनंद ने उनको ट्रिक किया, उनके साथ थोड़ी सी चालाकी की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द आइकॉनिक फिल्म शहंशाह। तो इसमें बच्चन साहब हैं और इसमें मीनाक्षी शेषाद्री हैं। सो मीनाक्षी शेषाद्री वाले रोल के लिए टीनू आनंद ने साइन किया था डिम्पल कपाड़िया को, उनको ना उनके साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन फिर टीनू आनंद को लगा कि बच्चन साहब पॉलिटिक्स को बाय बाय कह करके बॉलीवुड की फिल्में करने बहुत टाइम के बाद आ रहे थे, तो ऐसे में लोग कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, तो उन्होंने फिर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। आप भाई इस बात से काफ़ी ऑफेंड हुई डिम्पल, उन्होंने कहा कि मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगी, क्योंकि टीनू आनंद बार बार उनसे उनका साइनिंग अमाउंट वापस मांग रहे थे। शी सेड कि आई एम नॉट द वन हु इज़ वो। आनंद को लगा कि बच्चन साहब पॉलिटिक्स को बाय बाय कह करके बॉलीवुड की फिल्में करने बहुत टाइम के बाद आ रहे थे, तो ऐसे में लोग कोई नया चेहरा देखना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, तो उन्होंने फिर मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। आप भाई इस बात से काफ़ी ऑफेंड हुई डिम्पल, उन्होंने कहा कि मैं साइनिंग अमाउंट वापस नहीं करूंगी, क्योंकि टीनू आनंद बार बार उनसे उनका

वापस दे देंगी तो वो दो बैक टू बैक फिल्में उनके साथ अनाउंस करेंगे अलोंग विद अमिताभ बच्चन. वेल, डिंपल कपाड़िया के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अमिताभ बच्चन. क्या उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, यस और नो, बताऊंगी कुछ गानों के इस पर. मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची के साथ बनो हिंदी पेंडेंट।
2: आपके दोस्त ने नया टैटू बनवाया तो इंग्लिश में तारीफ करते हुए ये ना कहिए नाइस टैटू, बल्कि हिंदी पेंडेंट बनिए और कहिए लो गई सरकारी नौकरी।
1: मिर्ची की तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मिर्ची, इट्स हॉट।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

कि ये फिल्म देवानंद साहब ने जीना तवान के लिए बनाई थी। ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड ये जो फिल्म थी ना हीरा पन्ना, इस पे देव साहब और जीना तवान थे। अब क्यों ये फिल्म उन्होंने उनके लिए बनाई थी, ऐसा व्हाई पीपल सेज, बिकॉज ये जो फिल्म थी उससे पहले आई थी हरे राम हरे कृष्णा, और उस फिल्म में देव साहब ने जीना तमन को लॉन्च किया था। जीना तमन उस फिल्म में देव साहब की सिस्टर बनी थी। ये फिल्म हिट होने के बाद ना इतने सारे ऑफर्स आ रहे थे जीना तमन के, लेकिन सब बहन वाले। अब भाई जीना तमन तो ऑफकोर्स हीरोइन बनने आई थी, तो देव साहब ने उनको इन सारे ऑफर्स को ठुकराने के लिए मना किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें तुम हीरोइन होगी, लीड हीरोइन की तरह काम करोगी। एंड देन दिस फिल्म केम हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ऐसे किस्से कहानियां यहाँ चलती रहेंगी, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट मिस्टर विपुल?
3: यस
4: मिस्टर विपुल, हाय आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
3: हाँ हाँ बोलिए।
4: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
3: बट इसमें करना क्या होगा?
4: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
3: फाइन।
4: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
3: मिलता है,
4: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
3: ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
4: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
3: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे माँज सकते हैं।
3: Have you gone mad?
4: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
3: क्या बकवास कर रहे हैं?
4: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
3: हेलो
4: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
3: हाँ, हु आर यू?
4: सर मनीष।
3: हु आर यू?
4: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
3: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
4: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: This show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

गाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान में माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

नीतू जी अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार काम कर रही थी इस फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है फ्रॉम द फिल्म याराना, जिसमें नीतू सिंह अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट पहली बार काम कर रही थी, तो शी वॉज इतना इन ओ ऑफ हिम कि उनके मुंह से ना डायलॉग्स ही नहीं निकल रहे थे। तो जब सेट पे उनको पहली बार जब डायलॉग बोलना था ना, वो था देखो किशन कोई आ गया। नीतू जी इतनी ज़्यादा अमिताभ बच्चन से इम्प्रेस थी कि उन्होंने कपकपाते शब्दों में कहा, देखो देखो अमित कोई आ गया। अब भाई नाम उनका किशन था, यानी बच्चन साहब का कैरेक्टर नेम, लेकिन अमित कहा उन्होंने। और काफी टाइम के बाद किशन किशन किशन किशन प्रैक्टिस करने के बाद ना, तब जा करके वो अमित को साइड रख पाई थी। पुरानी जीन्स पे उस जमाने की बात है, मेरे यानी श्रेया के साथ होती रहेंगी, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नीरज साहब ने इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा गाने नहीं लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं उनमें से ये वाला अव्वल है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, रफी साहब का था ये गाना एंड लिखने वाले थे नीरज जी। कहते हैं पोएट नीरज कह लो आप, या फिर यू नो लिरिसिस्ट नीरज कह लो, कवि नीरज कह लो, भाई बातों के शब्दों के तो वो हमेशा धनी थे। एंड दे ऑलवेज से कि नीरज जी को ना अपने होम टाउन में एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो प्यार उनको कभी नसीब नहीं हुआ, और उस प्यार के लिए वो हर साल खत लिखा करते थे और उसे पोस्ट नहीं करते थे कभी। तो ये जो गाना है ना, लिखे जो खत तुझे, ये एक्चुअली में उनका एक खत था। एंड इस खत को पढ़ लिया था रफ़ी साहब ने और उन्होंने कहा अरे इसको गाने में बनाओ ना, मैं इसे गाऊंगा। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाओं का यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

0: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

इसी फिल्म को देखने के बाद तो सलीम जावेद साहब ने जिंदगी बदल दी थी बच्चन साहब की। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ ये गाना फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे टू गोवा, एक ऐसी फिल्म जिसमें बच्चन साहब के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। द ओनली हीरोइन हु अग्रीड टू वर्क विद बच्चन साहब इन दिस फिल्म वॉज अरुणा ईरानी जी। इस फिल्म को देखने के बाद सलीम जावेद साहब ने जब लिखी थी जंजीर, उन्होंने कहा कि उनको उनका लंबा घोड़ा मिल गया है। प्यार से बच्चन साहब को लंबा घोड़ा कहते थे दोनों। वेल, जंजीर के लिए बहुत सारे नाम सामने आए, लेकिन द स्क्रिप्ट राइटर्स यानी द एंग्री यंग मेन सलीम एंड जावेद जी ने डिसाइड कर लिया था कि अगर कोई ये फिल्म करेगा, अगर उनका कोई विजय होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चन साहब होंगे। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री कि जंजीर के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर हिम। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: महीने से पापा को कन्विंस कर रहा हूँ, पर वो नी रिप्लेसमेंट के लिए मान ही नहीं रहे। कैसे करूँ, प्लीज हेल्प करो ना।
1: अरे उनको नी रिप्लेसमेंट नहीं आता होगा ना, तभी वो ना बोल रहे होंगे। डॉक्टर रस्ताना के पास जाना।
2: साले का खोपड़ी तोड़, साले।

रणधीर कपूर जी ने प्रॉमिस किया था सुभाष घई से कि वो कान पकड़ के ऋषि कपूर को ले आएंगे ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना करेक्ट इज फ्रॉम द फिल्म कर्ज। अब ये फिल्म करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे ऋषि कपूर साहब। सुभाष घई ने उस टाइम पे इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम नहीं बनाया था, वो यू नो इनिशियल स्टेज पे थे, बट वो ये री इनकारनेशन पे, पुनर्जन्म पे फिल्म बनाना चाहते थे। इस सब्जेक्ट ने ऋषि कपूर को इतना इंटरेस्ट नहीं किया था, लेकिन रणधीर कपूर को किया था। एंड सुभाष घई चाहते थे कि उनके पास अवेलेबल तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बच्चन साहब, धर्मेंद्र जी, काका, बट ही वांटेड अ यंगर हीरो टू प्ले द रोल ऑफ मोंटी, और इसलिए ऋषि कपूर को कान पकड़ के रणधीर कपूर ले आए, और फिर तो मूवी वॉज सुपर डुपर हिट। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया श्रेया ने, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23
4: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती
4: है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर, जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ, क्या कर रहा
4: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं, आप बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ, 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं यार।
4: नहीं तो आपसे बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
3: कुकड़ों को
4: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने के बाद ये पहली फिल्म थी। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे के साथ ये जो गाना आपने सुना इस फ्रॉम द फिल्म बेताब, यानी धर्म पाजी के बेटे सनी देओल की डेब्यू फिल्म। और धर्म पाजी वाज द वन जिन्होंने अपने दोस्त जावेद अख्तर को ब्रेक दिया जब इन दोनों की, सलीम और जावेद की जोड़ी टूट गई। सो दिस बिकेम द फर्स्ट फिल्म जो जावेद अख्तर साहब ने एज एन इंडिपेंडेंट राइटर लिखी थी। वेल, पुरानी जीन्स पे मेरा नाम है श्रेया और इसी फिल्म बेताब का गाना आपके लिए था। अब भाई जल्दी से वापस आओ क्योंकि अगली फिल्म के बारे में भी तो बताना है। सो कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी फिल्म का है जो थ्रिलर फिल्म थी लेकिन इट वॉज नोन मोर फॉर इट्स म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इस फिल्म के लिए अपना फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट रफी साहब ने गाया है ये गाना। बताओ बताओ कौन सी फिल्म का है? करेक्ट, मूवी का नाम कर्ज, जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बैक्ट फिल्म फेयर अवार्ड। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ अब चले हाईवे पे। ऑलराइट, तो जाने से पहले एक हाईवे हिट जो मैं डेडिकेट करके जाती हूँ आज वाला ना, किसी को डेडिकेट करने का मन नहीं है। ये एक ऐसा गाना है जो हम सबको पसंद है, और कभी कभी तो जब हम अकेले बैठते हैं ना तो इस गाने को सुन रहे होते हैं, स्पेशली इफ़ वी आर रेट्रो फैंस। मुकेश जी की आवाज़ है और गाना कौन सा है ये तो अभी आप सुन ही लोगे। तो ये सबका फेवरेट है, इसीलिए किसी खास बंदे के लिए नहीं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। फेसबुक और इंस्टा पे माई हैंडल इज आर जे श्रेया विद लव, दैट्स आर जे एस एच आर यू वाई ए श्रेया विद लव। तो इस आवाज के पीछे का चेहरा देखना हो तो वहाँ आ सकते हो, कुछ वार्तालाप करनी हो वार्तालाप तो वो भी कर सकते हो। गुड नाइट।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।